इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तोहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तोहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

92.2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट होता हूँ। तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दें कार्यक्रम दा अगला गीत।

सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो सुन देन कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इन बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने पंगे।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

घोड़ा। अरे भाई निकल के आ घर से दुनिया की रौनक देख फिर से देख ले फिर से।

हाँ जी अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता, अपने बाप का आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा। अच्छा ख्याल है आपका।

0: आते हैं।
1: मेरे जूते से
0: जूता पॉलिश करेगा, जूता पॉलिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दिवा।

0: को
1: मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना चाहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना चाहे

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार।

खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा।

धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शोध इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो उज्जैन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। और हाँ श्रोताओं, सभी श्रोताओं का हम स्वागत भी करते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे श्रोताओं को ये पता होता है कि ठीक 9 बजे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर हमारे दोस्त हर दिन हाजिर हो जाते हैं, तो अपने समय के अनुसार वो अपने रेडियो सेट भी ऑन कर लेते हैं क्योंकि ढेर सारी जानकारियाँ हम उन तक पहुँचाते हैं। जानकारियों के साथ साथ सुनवाते हैं प्यारे प्यारे गीत, क्योंकि कहते हैं अगर कार्यक्रम में गीत ना हो तो कार्यक्रम थोड़ा अधूरा सा लगता है, और गीत संगीत के साथ हमारा कार्यक्रम जो है पूरा भी हो जाता है। और ज़्यादा बातें होती रहें श्रोताओं हमारी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बोर हो रहे होंगे हमारे श्रोताओं। तो श्रोताओं बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेंगे, पूरे 2 घंटे का सफ़र आपके साथ रहेगा। इसमें खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब सारी धमाल करेंगे और ढेर सारी जानकारियाँ जो हैं आप तक पहुँचाएँगे। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुँचाते हैं।

कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओ कहते हैं नई सुबह खुशियों का बसेरा, सूरज की किरणें चिड़ियों का सवेरा, ऊपर से आपका ये खिला हुआ चेहरा, मुबारक हो आपको ये सुहाना सा सवेरा। जी हाँ, मुबारकबाद तो बनती है क्योंकि जब दो दिन पहले की बात करें, खिली हुई धूप थी तो उसमें बहुत ही कामकाज करना जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए मुश्किल होता है। खैर, जो लोग घरों में रहते हैं या फिर कार्यालय में बैठते हैं उनके लिए तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो मजदूर होते हैं धूप में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही परेशानी हो जाती है। और आज का मौसम देख कर भी उनके चेहरे खिले हुए हैं, उन्हें अच्छा लगता है थोड़ा सा बादल हो और काम करने का उनको मज़ा आता है। और वैसे आम लोग भी आज खुश हैं, जब गर्मी से हमें थोड़ी सी राहत मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। खैर, आजकल के दिनों की बात करें तो सुबह जल्दी हो जाती है, जैसे लगभग 4:30 के करीब जो है पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ जो है हमारे कानों तक पहुंचने लगती है और हमें लग जाता है पता कि सुबह हो चुकी है, हमें उठना चाहिए। जब उठेंगे, थोड़ा सा अपने लिए समय देंगे तो कहीं ना कहीं हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहकर इस प्यारे से जीवन को एंजॉय भी कर पाएंगे। जी हाँ, श्रोताओं कार्यक्रम में और भी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

तो इस परे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विचार की। कहते हैं एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना पड़ता है। जी हाँ श्रोताओ, अगर बात करें अपनों की, परिवार की, तो परिवार के बिना इंसान बहुत ही अकेला होता है। और परिवार में रहकर हम बहुत कुछ सीखते हैं, सुख दुख देखते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे रिश्ते हमें परिवार में मिलते हैं जिनसे मिलकर ज़िंदगी का सफ़र हम तय करते हैं। और जब सफ़र तय करते हैं तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही दोगुना और बढ़ जाता है। और मिलते जुलते कब ये ज़िंदगी का सफ़र पूरा भी हो जाता है ये हम सोचते ही रह जाते हैं कि अरे कैसे कट गया ये सफ़र, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी लगती है। वैसे देखा जाए श्रोताओं तो हमें एक हफ़्ता काटना हो तो लगता है ओहो ये तो बहुत लंबा सफ़र है। हफ्ता बीतता है, महीना बीतता है, साल बीतते हैं और कई साल बीत जाते हैं। इसी तरह से अपनों के साथ बहुत जल्दी ये सफ़र बीतता है। तो अपनों के साथ प्यार से रहें, मिलकर रहें और इस प्यार को थोड़ा सा और मजबूत करते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 80% रहा मतदान। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण का मतदान कल 30 मई को 1187 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के दिए निर्देश। चंबा जिला में नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की जा रही कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल संपन्न हो गया। इस दौरान मतदान 80% रहा। प्रदेश में अब तक हुए पंचायती राज चुनावों में ये सर्वाधिक मतदान है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की कुल 1279 पंचायतों में वोट डाले गए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी।
1: पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश भर में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। खासकर बुजुर्ग मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जोरदार उत्साह दिखाया। इस दौरान कुल्लू जिला में सर्वाधिक 86%, जबकि सबसे कम लाहौल स्पीति में 79% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। कुल्लू जिला में सर्वाधिक महिला मतदान दर्ज किया गया, जो लगभग 86% रहा। पंचायत स्तर पर सोलन जिला के नालागढ़ के ढेला पंचायत में सबसे अधिक 96% मतदान दर्ज किया गया। 9 जिलों में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुष मतदाताओं से ज्यादा रहा। ये मतदान प्रतिशत वर्ष 2021 के चुनाव के दूसरे चरण की तुलना में 4% अधिक रहा। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं पूनम भारद्वाज।
0: प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 30 मई को होने वाले मतदान के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से वोट मांगकर अपनी अपनी जीत पक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरे चरण में 1187 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों का चयन होगा। इस दौरान इन पंचायतों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। जिला परिषद, पंचायत समितियों और 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के वोटों की गिनती 31 मई को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणात्मकपूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा ये पहल राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए किए जा रहे सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद भर रही है, ताकि इनकी कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। चंबा जिले में नशे एवं नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों की रोकथाम तथा उनकी धरपकड़ हेतु कार्यतंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने आवश्यक पग उठाए हैं। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में चिटाव एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: जिला चंबा में नशा विरोधी अभियान के तहत एनडी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 2024 में अब तक 43 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल 64 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए चंबा द्वारा शिक्षा विभाग को विद्यालयों में नशे से दूर रखने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने, उचित स्थानों पर शिकायत पेटियां स्थापित करने तथा समय समय पर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसके अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को बस अड्डों पर डिजिटल स्क्रीन स्थापित कर नक्शा मुक्ति और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा नशे की तस्करी रोकने हेतु विशेष रूट्स पर परिवहन निगम की बसों में कैमरे स्थापित करवाने को भी कहा गया है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा का कल 30 मई को हिमाचल दौरे पर रहने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे बिलासपुर जिला के विजयपुर में पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने बताया कि नड्डा राजकीय प्राथमिक पाठशाला विजयपुर स्थित अपने बूस्तर पर परिवार सहित मतदान करेंगे। कल पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। यह चुनाव सुबह 7 बजे शुरू होगा, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। गोविंद सागर और कोल डैम जलाशय में 16 जून से 15 अगस्त तक मछलियों के पकड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मत्स्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान मछली का शिकार करने की अनुमति नहीं होगी। विभाग के अनुसार प्रतिबंध का उद्देश्य मछलियों की प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया को सुरक्षित रखना और जलाशयों में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। शिमला के गेटी थिएटर में 8 से 12 जून तक अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के तहत रंगमंच उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त जिला शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि यह आयोजन हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत, लोककला और रंगमंच परंपरा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कल हुए मतदान से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, दूसरे चरण में रिकॉर्ड 80% मतदान, 1276 पंचायतों में चुने गए जनप्रतिनिधि। दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 80% मतदान, कुल्लू में सबसे ज्यादा 86%। दैनिक जागरण के शब्द है, बादलों की छाव में मतदान के लिए उत्साह। हिमाचल दस्तक की खबर है, 1 जून से फिर शुरू होगा भारत चीन बॉर्डर ट्रेड, शिपकिला दर्रे के माध्यम से पुनर्जीवित होगा सीमा व्यापार। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, गर्मी से राहत, आज से बारिश, ओलावृष्टि के साथ तेज तूफान चलने की चेतावनी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 80% रहा मतदान। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण का मतदान कल 30 मई को 1187 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के दिए निर्देश। चंबा जिला में नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की जा रही कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं, आज की बात करें तो आज है 29 अप्रैल और दिन है शुक्रवार का। बहुत सारी ढेर जानकारियाँ जो है आज का दिन लिए हुए है, तो इसमें बात करें महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे द्वारा 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर के में हुई थी। और साथ ही साथ 1982 की बात करें तो प्रसिद्ध अभिनेता और नेता एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। 2008 की ओर थोड़ा सा रुख करें तो चीन में मिट्टी से बने 8000 सैनिकों के अद्भुत टेराकोटा आर्मी को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था। 2011 में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को कम करने के लिए हाईलाइट स्थापित की गई थी। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ और भी हम साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापसी करते हैं और थोड़ा सा कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात हम गर्मी की करेंगे कि गर्मी का जब मौसम आता है तो लू लगने की भी संभावना होती है और मौसम में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। कभी तेज़ गर्मी हो जा रही है तो कभी बारिश और हल्के बादल भी हो रहे हैं। और जब गर्मी होती है तो बहुत सारे बदलाव हमें अपने खाने पीने में भी करने पड़ते हैं। यही बदलाव अचानक शरीर के इम्यून सिस्टम पर भी असर डालते हैं और कई तरह से सर्दी जुकाम या फ्लू की समस्या जो है श्रोता होने लगती है। खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों में इसका ख़तरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और बदलते मौसम में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो वायरस जल्दी हमला कर जाता है। ऐसे समय में खान पान, साफ़ सफाई और कुछ खास आसन उपाय अपनाकर हम लू से भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं, तो उनकी भी बात कार्यक्रम में हम करेंगे ताकि हमारे श्रोता जो है बिल्कुल फिट एंड फाइन रह सके। उससे पहले कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं, आइए सुनते हैं रेडियो गुंजन से प्यारे प्यारे गीतों को।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और हमारी बातचीत गीत से पहले थोड़ी सी मौसम के ऊपर हो रही थी, क्योंकि मौसम में बदलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस बदलाव को हम सारे महसूस कर रहे हैं। कभी अचानक से ठंडा मौसम हो जा रहा है तो कभी एकदम से गर्मी हो जा रही है। ऐसे मौसम में थोड़ा सा तालमेल बिठाने में मुश्किल होता है। यही वजह रहती है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है और वायरस आसानी से असर दिखाने लगता है। यही कारण है कि मौसम में फ्लू, सर्दी और खांसी के मामले भी बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा श्रोता, उस बदलाव भरे मौसम में अपना सभी को ध्यान रखना है ताकि हम स्वस्थ रह सकें, और स्वस्थ रहने के लिए संगीत भी बेहद ज़रूरी होता है। और संगीत जो है ज़िंदगी में बहुत ही रस खोलता है, एक सुकून भी देता है। कभी आपने नोट किया होगा कि जब हम कभी थोड़ा सा उदास हो तब भी थोड़ा सा स्लो म्यूज़िक सुनना हमें अच्छा लगता है, और जब कभी खूब खुशी वाला माहौल हो तो हम थोड़ा सा धूम धड़के वाला गीत संगीत सुनना चाहते हैं। तो कोशिश करते हैं कि आपको पहले से गीत की ओर ले जाएँ। तो आइए इन्जॉय करते हैं इस गीत को।

तो प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हमारी वापसी होती है और हम बात कर रहे थे बदलते मौसम के बारे में, और गर्म पानी और भाप से थोड़ी सी राहत मिलती है बदलते मौसम में। अगर हल्का ज़ुकाम या गले में खराश महसूस हो रही है तो गर्म पानी हमें काफ़ी

राहत देता है। इससे गले में आराम मिलता है और शरीर भी हाइड्रेट रहता है। इसके अलावा भाप लेना भी एक अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। भाप लेने से नाक बंद होने की समस्या कम होती है और सांस लेना आसान हो जाता है। ये तरीका सर्दी जुकाम के शुरुआती लक्षणों में काफ़ी मददगार साबित होता है। हल्का और पौष्टिक भोजन श्रोताओं अपनी डाइट में शामिल करें आजकल के मौसम में, क्योंकि तला भुना खाना जो है आजकल के मौसम में खाने से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हमारे शरीर को नुकसान देता है। बदलते मौसम में ज़्यादा हमें इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए और इस तरह का भोजन करने से हमारे पाचन तंत्र पर असर भी पड़ता है। ऐसे समय में हल्का और पौष्टिक आहार बेहतर माना जाता है। दाल, हरी सब्जियाँ, फल और सूप जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को ज़रूरी पोषण देते हैं। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर भी मजबूत रहता है और फ्लू जैसे संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो श्रोताओं ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों को फिर से थोड़ा सा यहीं पर देते हैं विराम और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम पर्याप्त नींद की थोड़ी सी बात अब कर लेते हैं। कई बार लोग हल्के फ्लू या जुकाम को नज़रअंदाज करते हैं और आराम नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अगर शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता है तो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। इसलिए अगर कमजोरी या थकान महसूस हो रही है तो शरीर को आराम देना ज़रूरी है। अच्छी और पूरी नींद लेने से इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम भी करता है, और इसके साथ साथ साफ़ सफाई और हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। फ्लू फैलने का सबसे बड़ा कारण वायरस के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना होता है, इसलिए हाथों की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बार बार हाथ धोना ज़रूर रखें, अपनी दिनचर्या में शामिल करें। छींकते या खांसते समय मुंह ढक लेना चाहिए ताकि जो है कीटाणु इधर उधर ना फैले। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें श्रोताओं, हम जो है अपने साथ साथ दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को यहीं पर रोकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापसी हमारी हो चुकी है और थोड़ा सा विषय की बात कर लेते हैं। तो शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी होता है। बदलते मौसम पर कई लोग पानी कम पीते हैं जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन फ्लू से बचने के लिए शरीर का हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। पर्याप्त पानी मात्रा में पानी, सूप या हल्के पेय पदार्थ लेने से शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और संक्रमण से लड़ने में भी मदद मिलती है। अगर बदलते मौसम में थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो फ्लू जैसी समस्याओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सही खान पान, पर्याप्त आराम, घरेलू उपाय को अपनाकर हम इस मौसम में खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। किसी भी समस्या से राहत के लिए अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। तो श्रोताओं, गर्मियों में बहुत सारे पेय पदार्थ होते हैं, तरबूज का जूस हम ले सकते हैं और कई सारे शेक बनाकर पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू शकंज भी ले सकते हैं और भी बहुत सारे पेय पदार्थ ऐसे होते हैं, लस्सी ले सकते हैं, तो जिन्हें पीकर हम गर्मी से भी राहत पा सकते हैं। तो अपनी बातों को यहीं पर थोड़ा सा रोकते हैं, अगला गीत आप तक पहुँचा।

ईस्टर डे के बारे में तो हर साल आज के दिन यानी 29 मार्च को इसे मनाया जाता है। ये दिन 1953 में न्यूजीलैंड के सर एडमिन हिलरी और नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे शेर्पा द्वारा माउंट एवरेस्ट पर की गई पहली सफल चढ़ाई की याद में मनाया जाता है। तो श्रोता, इसके इतिहास की बात करें तो 29 अप्रैल 1953 को सुबह 11:30 पर एडमंड हेलरी और तेंजिंग नॉर्गे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाले पहले इंसान बने। उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में नेपाल सरकार से 2008 में हर साल इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। तो श्रोताओ, ये तो थी जानकारियाँ आज के दिन की। अभी और भी आपके साथ साझा करने बाकी है। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आते हैं और हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के बारे में। इसकी शुरुआत की बात करें तो अभूतपूर्व मानवीय उपलब्धियों और साहस को सम्मान देने के लिए नेपाल सरकार ने 2008 में आधिकारिक तौर पर हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे के रूप में मनाने का फैसला लिया था। ये दिन पर्वतारोही की भावना, मानवीय सहन शक्ति और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को जीतने की इच्छा शक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित भी करता है। साथ ही साथ विशेष रूप से नेपाल, जहां एवरेस्ट को संगरमाथा कहा जाता है, और न्यूजीलैंड में इस दिन मैराथन दौड़, रैलियां और पर्वतारोहण से जुड़े सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियां और भी हम अभी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोता इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हम आपके साथ ढेर सारी जानकारियां साझा कर रहे थे। उन जानकारियों में फिर से आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल एवरेस्ट डे की हम बात श्रोताओ कर रहे थे। तो एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊँचाई 1848 मीटर है। हिलरी और शेरपा 29 मई 1953 के दिन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सफल हुए थे। उन्हीं की याद में हर साल 29 मई को का दिन अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। इसका एक अन्य उद्देश्य नेपाल पर्यटन को बढ़ावा देना भी है और अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस पर्वतारोही को सम्मानित करने के लिए नेपाल द्वारा मनाए जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम भी है। तो श्रोताओं अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं विराम और मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: तो क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
5: फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शोध इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुई है आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन। तो शोध, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे की हम बात कर रहे हैं, तो ये दिन पहाड़ों पर चढ़ने के खतरे को बताना और उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिन्होंने इस सफ़र के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। ये दिवस पर्वतारोही को एवरेस्ट चोटी फतेह करने के लिए भी प्रेरित करता है। साथ ही साथ श्रोताओं, माउंट एवरेस्ट का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर भी रखा गया था, जो 1830 से 1843 तक भारत की सरकारी सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। हिमालय पर्वत को मापने वाले वे पहले व्यक्ति थे। तो श्रोताओं, फिर से अपनी जानकारियों को थोड़ा सा रोकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: कुछ।
1: श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और हम बात कर रहे हैं एवरेस्ट पर्वतों के बारे में। सन 1965 में भारतीय सेना के कैप्टन अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट के फतेह करने वाले भारतीय पुरुष थे। वहीं विच्छेद्रीपाल ने इस चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला रही हैं। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। थोड़ी सी और जानकारियाँ आपके साथ साझा कर लेते हैं। और वर्ष 1953 का मतलब लगभग 71 साल पहले आज ही के दिन न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमिन हिलरी ने नेपाल के तेंजिंग शेरपा के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, जिसमें वो सफल भी रहे थे। साल 2008 में एडमंड हिलरी की मृत्यु के बाद उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का ये सिलसिला आज भी जारी है। माउंट एवरेस्ट का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो 1830 से 1843 तक भारत की सरकारी सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। हिमालय पर्वत को मापने वाले वे पहले व्यक्ति रहे थे, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। थोड़ा सा जानकारियों को यहीं पर रोकते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और कार्यक्रम में एवरेस्ट रे की हम बात कर रहे थे। तो नदियाँ, पर्वत, जंगल ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जो हर किसी के किसी न किसी चीज़ के लिए महत्व रखते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी आवश्यक है। प्रदूषण व कई अन्य कारणों से इन संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, और पर्वतारोहियों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद एवरेस्ट फतेह कर वहाँ की स्थितियों के बारे में दुनिया को समय समय पर अवगत भी करवाया है। साथ ही साथ 29 मई को भारत, नेपाल और न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सागरमाथा दिवस के रूप में भी से जाना जाता है। 1953 में सर एडमिन हेलरी द्वारा पहले सफल शिखर सम्मेलन की स्मृति में मनाया जाता है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारी। अपनी जानकारियों के साथ साथ फिर से आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और हमारी बात हो रही थी एवरेस्ट दिवस के बारे में। एवरेस्ट दिवस पहली बार एडमन हेनरी की मृत्यु के बाद 2008 में मनाया गया था। न्यूजीलैंड और नेपाल ने एवरेस्ट को शिखर सम्मेलन की याद में ये दिन मनाया गया था। न्यूजीलैंड विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जुलूसों का आयोजन किया जाता है, इस दिन को याद किया जाता है जब तेंजिंग और हेनरी ने मानव इच्छा शक्ति का स्तर बढ़ाया था। साथ ही साथ इस तरह नेपाल की राजधानी काठमांडू और एवरेस्ट क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग हाई प्रोफाइल अतिथि आयोजन में आते हैं। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस पर आयोजित लोकप्रिय कार्यक्रम एवरेस्ट मैराथन भी की जाती है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को थोड़ा सा यहाँ पर रोकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ ढेर सारी बातें की। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। तो आइए चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। Thank you.

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: Thank you.

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ,

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम के साथ। जी दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से एक अलग सी एक नई जानकारी के साथ हम इस कार्यक्रम की कड़ी लेकर आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते आप सभी जुड़ते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही प्यारी सी बातचीत के साथ इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में। तो मैम, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में हमारे साथ, हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रुचिका। और अच्छा लगता है ना अपने दोस्तों के साथ मिलके बातें करना, नई नई जानकारियां उनके साथ साझा करना।
0: बिल्कुल, और मुझे आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर हफ्ते मुझे एक नई जानकारी जानने को मिलती है, नई बातें सुनने को मिलती है।
1: बिल्कुल रुचिका, और जब तक हम हमारे पास अगर कोई जानकारी है उसको हम दूसरों तक साझा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि उस जानकारी को अपने तक समेट के रखने में कोई भी अच्छाई नहीं है। अगर हम दूसरों तक बात कोई जानकारी पहुंचाने में सक्षम ही नहीं है तो फिर हमारे यहाँ के मिलने का जुड़ने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि अक्सर होता है ना कि कहते हैं कि हर इंसान को जो है मतलब सब कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हर किसी को कुछ कुछ जरूर पता होता है।
1: बिल्कुल, और जब हम एक पुख्ता जानकारी के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, अपने श्रोताओं से रूबरू होते हैं
0: जी,
1: तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमने एक ऐसी जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचा दी है।

0: इतना सारा लोगों के साथ जुड़े हैं और हमारा समाज का एक जो पैटर्न है वो इस तरह का है रुचिका कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम कोई भी व्यक्ति जो है वो अकेले अपनी जिंदगी को नहीं जी पाता है। ऐसे में अगर मुझे कुछ सहायता चाहिए तो मैं रुचिका की ओर देखूंगी। अगर हमें घर के लिए राशन खरीदना है तो हम बाजार का रुख करेंगे, बदले में हम पैसे देते हैं और सेवाएं हासिल कर लेते हैं। कोई भी चीज हमें, क्योंकि देखो हर चीज तो मेरे घर में उपलब्ध
1: नहीं होती,
0: मैं सब्जी उगा नहीं सकती हूँ, मैं अनाज नहीं उगा सकती हूँ, मेरे को और चीजों की जरूरत है, मुझे डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है। समय समय पर हमें बहुत सारी जो सामाजिक हमारी जरूरतें हैं वो हमें उनके लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और रुचिका ऐसे में कई बार क्या होता है, जैसे मानो मैंने बाजार से कोई सामान ही खरीद लिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक केटल खरीदी थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है तो गर्म पानी की जरूरत सबको रहती है, तो हम सोचते हैं फटाफट से बिजली का स्विच ऑन किया और पानी गर्म हो गया और जल्दी से वो चूल्हा जलाने का झंझट, गैस जलाने का झंझट जो है वो हमने नहीं रखे हैं, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी है। और ऐसे में क्या हुआ कि हफ्ते के बाद ही वो मेरी जो केटल थी वो खराब हो गई। और जब मैं वापस दुकानदार के पास गई तो उसने उसको वापस करने से मना कर दिया, हालांकि उसमें वारंटी पीरियड था, और उसके बावजूद भी उसने उसको वापस नहीं किया और मुझे बहुत तकलीफ ही हुई उस चीज से। और देखो हम अपना मेहनत का पैसा जब कहीं खर्च करते हैं और हमारी वही चीज हमें खराब मिलती है और सामने से दुकानदार जो है वो हमें मना कर देता है कि आपकी गलती से हुआ है या फिर आपने ही इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया इसलिए खराब होगी और अब मैं वापस नहीं करूंगा या इसको ठीक करवा के नहीं दूंगा। हालांकि वारंटी पीरियड में अगर किसी भी उत्पाद में, जैसे बिजली का कोई उत्पाद हम खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, किसी भी चीज का वारंटी पीरियड है, उसमें वो खराबी आ जाती है तो दुकानदार की ये ड्यूटी होती है कि वो उसको बदल दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे काफी सारा मानसिक दबाव पड़ा, काफी परेशानी हुई मुझे।
1: बिल्कुल,
0: और आप समझ सकती हैं जब आपके घर में कोई चीज आती है खराब हो जाती है तो कितना दुख होता है। एक तो हमारी पॉकेट ढीली होती है, ऊपर से गुणवत्ता उसकी सही ना होने पे हमें बड़ी तकलीफ होती है। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं इस तरह की रोजमर्रा की तकलीफों से गुजरते हैं, जब हम कोई सामान खरीद ले आते हैं या फिर किसी से किसी प्रकार की कोई सर्विस हायर कर लेते हैं और वहां पे नुकसान होता है तो हमें उसकी भरपाई नहीं मिलती और हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम इस चीज को बदलाने कहाँ जाएं या फिर हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कहाँ से करें। तो मुझे लगता है कि आज जो मेरे साथ एक्सपीरियंस गुजरा है उसी के संदर्भ में हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, और बहुत से दोस्त अपनी डेली रूटीन की कुछ बातें इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आप ही के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा या किसी और, बहुत से लोगों के साथ ऐसी चीजें होती हैं और इसका हम एक अलग वे में भी जानेंगे कि किस किस तरह से होता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत के साथ तो हमने शुरुआत कर दी है कार्यक्रम की, लेकिन बीच में थोड़ा सा अगर मनोरंजन हो जाए।
0: बिल्कुल, जब मनोरंजन का तड़का हम चीजों में लगाएंगे तो जो भी हम जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे वो और भी उम्दा होके जाएगी और अच्छा लगेगा हम सभी को।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। फिर से मुलाकात होगी आप सभी की हमारे साथ इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवाया है रुचिका ने हम सबको और मजा आ गया है। लेकिन इस मजे को हम बरकरार रखेंगे रुचिका, आगे हम अपने दोस्तों के साथ जानकारियां साझा करेंगे। और रुचिका, मैं आपको बता दूं, आज मेरा मन था अपने दोस्तों के साथ बात करने का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में रुचिका, हम लोग बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है वो स्मूथली चला रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन कई बार बड़ी परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाती है, और ऐसे में फिर हम जो छोटी छोटी चीजें अवॉइड कर रहे होते हैं, फिर लगता है कि नहीं, हमें भी आवाज उठानी चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, या कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोताही किसी सर्विस में, किसी सेवा में हो गई है, तो हमें आवाज उठानी चाहिए। और इसी बात को पुख्ता करने के लिए 1986 में अधिनियम आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका मेन मकसद था कि अगर हम किसी भी प्रकार का कोई उत्पाद खरीदते हैं, कोई भी सेवा किसी से भी हायर करते हैं, तो और उसमें अगर कोई कोताही पाई जाती है, तो फिर जो आम उपभोक्ता है वो कहाँ जाएगा, कहाँ पे उसकी समस्या का जो है वो निदान होगा। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था जो पारित हुआ था 1986 में, और 1 जनवरी 1987 को ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया था। और उसके बाद काफी सारे बदलाव भी आए, उपभोक्ता हमारे जागरूक हुए, क्योंकि इस अधिनियम का मेन जो मकसद था सिर्फ उपभोक्ताओं की सुरक्षा ही करना नहीं था, इसका मकसद आम पब्लिक में, जनता के बीच में पब्लिसिटी और जागरूकता पैदा करना भी था। हमारे अधिकार क्या हैं, हम उनके लिए किस तरह से लड़ सकते हैं, किस तरह की हम बात कर सकते हैं, कहाँ से हम चीजें खरीदें, और अगर हमारे साथ कहीं कोई धोखा होता है तो हम कौन सा ऐसा दरवाजा है जिसका हम दरवाजा हम खटखटाएं, और हमारे साथ हुई धोखाधड़ी, फरेब, या जो भी आप जालसाजी कह सकते हैं, उससे हम बच सकते
1: छुटकारा
0: हैं।
1: पा सके। बिल्कुल रूमा जी, आप पहले ही कह रहे थे ना कि आपके साथ जो आप एक्सपीरियंस हुआ बहुत बुरा रहा। होता है जब हम मेहनत की कमाई, और अक्सर पता है क्या होता है, जब हम बाजार में जाते हैं तो अक्सर हमें बहुत सारी चीजें या बहुत कुछ चीजों के रेट हमें ज्यादा भी लगते हैं, और वहां पे एक चीज तो होती है, हमें ये तसल्ली होती है कि यहाँ पे वारंटी, हम इसे मतलब रिपेयर करा सकते हैं कुछ समय की, जो हमें टाइम पीरियड मिला है। तो हम मतलब अगर कई बार होता है ना कि चीज हम घर लेकर गए और अगले ही दिन खराब हो जाती है,
0: बिल्कुल
1: तो जो हम ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है तो बाजार जाना इसीलिए हम बेस्ट समझते हैं, लेकिन अगर वो भी चीज हमें वापिस ना मिले तो फिर उससे भी हमें तो फिर हम ऑनलाइन की तरफ ही जाएंगे कि इससे तो बेटर ऑनलाइन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और रुचिका, अगर आपने बात करी ऑनलाइन सिस्टम की, तो आजकल ऑनलाइन ट्रेड हो रहा है, हम धड़ाधड़ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं।
1: जी
0: इस अधिनियम में 2019 में बदलाव किए गए हैं, और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन परचेजिंग और ऑनलाइन जो भी सर्विसेज हम हायर करते हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो हमारे दोस्तों को डरने की जरूरत नहीं है, अगर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन सेवा वो हायर करते हैं तो उसमें भी वो अब इस अधिनियम का फायदा उठा के अपनी समस्या का निदान जो है वो कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम चाहे बाजार जाएं, चाहे ऑनलाइन हम शॉपिंग करें, तो हमारे लिए एक राहत भरी बात। तो रूमा जी, हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि कंज्यूमर उपभोक्ता है कौन असल में।
0: बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है रुचिका जी।
1: जी
0: आम जिंदगी में हम सभी उपभोक्ता हैं, किसी ना किसी तरीके से हम कोई ना कोई सर्विस किसी से ले रहे हैं। अगर हम मकान बनवा रहे हैं तो हम मिस्त्री से सहायता लेते हैं, अगर हम कहीं सफर कर रहे हैं, हम बस में सफर कर रहे हैं तो हम टिकट ले रहे हैं, बस सर्विस हायर कर रहे हैं,
1: जी
0: हवाई जहाज की यात्रा, रेलगाड़ी की यात्रा, या फिर हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो डॉक्टर हमें सेवाएं दे रहा है। अगर हमने किसी प्रकार का कोई विवाद है, चाहे जमीनी है या फौजदारी है, और हमने किसी वकील को हायर कर रखा है, किसी भी काम के लिए अगर हम किसी की सेवाएं लेते हैं तो वो भी कंज्यूमर, तब भी हम कंज्यूमर हैं, हम उपभोक्ता हैं। दूसरा, सहकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में, कहीं पर भी हम किसी प्रकार की कोई सेवा पैसे का मूल्य देके अगर हायर करते हैं तो हम उपभोक्ता हैं। दूसरा, हम डेली यूज में जो भी सामान खरीदते हैं, सुई से लेके कोई भी बड़ी चीज हम खरीद रहे हैं तो हम उपभोक्ता हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर निर्भरता के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। तो चाहे एक चीज और इसमें ऐड करूंगी, जैसे हम होटल में खाना खा रहे हैं तो वहां पे भी हम होटल से कुकिंग सर्विस हायर कर रहे हैं, तो वहां
1: बिल्कुल
0: पे भी हम कंज्यूमर हैं। अगर आपको खराब उत्पाद बेचा जा रहा है, खराब खाना आपको दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आप बीमार हो गए हैं, तो तब भी आप कंज्यूमर फॉर्म का जो है वो रास्ता जो है अपना सकते हैं, दरबार खटखटा सकते हैं।
1: तो ये एक्ट एक तरह से सभी के लिए है, मतलब कि
0: बिल्कुल
1: इक्वली सभी इसके लिए आवाज उठा सकते हैं।
0: बिल्कुल, इसमें जाति, लिंग, धर्म और जगह या फिर आयु और इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई भेदभाव इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगर हम आयु में छोटे हैं तब भी अगर हमने कोई सेवा हायर की है और हमें नुकसान हुआ है तो तब भी हम कंज्यूमर फॉरम में जा सकते हैं।
1: तो रूमा जी, अगर हमने जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं, तो जैसे अगर वारंटी पीरियड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वारंटी पीरियड ना हो तब भी हम वहां जा सकते हैं या फिर नहीं? क्योंकि अक्सर हम, एक तो वारंटी पीरियड होता है तब भी हम डरते हैं कि शॉप पे कैसे जाएं, अगर जाएंगे तो कहीं शॉपकीपर हमें डांटे ना सबके सामने, कि कुछ बोले ना, तो ये डर हमारे अंदर सता रहा होता है। और हम चाहे 6,000 की, 7,000 की, 10,000 की चीज होगी, हम उसे वहीं क्लोज कर देंगे कि कोई बात नहीं, दोबारा ले लेंगे या खुद ठीक करा लेंगे।
0: बिल्कुल रुचिका, बहुत ही अच्छी बात आप पूछ रही हैं। और हम डेली रूटीन की बात करें रुचिका, हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, आप भी बाजार जाती होंगी, आप बस से सफर करती हैं और मुझे नहीं लगता कि आपने कभी बस कंडक्टर से टिकट मांगा हो। कई बार ऐसे होता है कि हम टिकट नहीं लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ऐसे में हम भी लापरवाही करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी रुचिका कि हम लोगों को जब भी हम कोई उत्पाद खरीदते हैं तो उसका बिल जो है वो हमें जरूर लेना चाहिए, दुकानदार से साइन किया हो, और बिल जो है वो एक हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जो साबित करता है कि हमने फलां व्यक्ति से सर्विस हायर की है या फिर फलां जगह से हमने सामान खरीदा है। क्योंकि ज्यादातर मामलों में क्या होता है, जब हम किसी चीज का बिल नहीं देते हैं और हमें उस चीज का नुकसान हो जाता है तो हम अपनी बात को साबित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं होता है कि हम कंज्यूमर फॉर्म में अगर जाते हैं अपना बात रखने के लिए और हमारे पास बिल नहीं है, परचेजिंग डेट नहीं है, उसके ऊपर उस चीज की डिटेलिंग नहीं हुई है, तो फिर हमें नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं से, अपने दोस्तों से यही आग्रह करूंगी कि जब भी कोई सामान खरीदें, चाहे वो छोटी सी सुई ही खरीद रहे हैं, उसका बिल दुकानदार से जरूर लें। क्योंकि देखिए, हमें नहीं पता कौन सी जगह पे हमें क्या जरूरत पड़ जाएगी।
1: तो ये तो हम तभी लेते हैं रूमा जी। अब आपने मेरे को टिकट की बात कही है ना, तो मैं सच बताऊं तो सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हमें डर होता है कि कहीं चेकिंग हो जाएगी तब हम लेते हैं, अदरवाइज तो हम लेते ही नहीं है।
0: बिल्कुल, और ये चीज यहीं पे हमें नुकसान देती है। देखिए, हम जब घर से निकलते हैं तो ये सोच के नहीं निकलते हैं कि हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, और कई बार ऐसे होता है कि कहीं बस जिसमें हम सफर कर रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कई बार व्यक्तियों की पहचान भी सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमारे पास एक, और कई बार क्या होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो ये भी करती हैं कि ये तो हमारे साथ बस में थे ही नहीं, तो हम कैसे हम साबित करेंगे कि हम भी उस बस में थे, हमें नुकसान हुआ, या कहीं किसी ने बस को रोक लिया, वहां पे लूट हो गई, रॉबरी हो जाती है, तब भी एक टिकट ही था जो हम बता सकते हैं कि हम इस बस में सफर कर रहे थे। और ये एक हमारे लिए गारंटी का काम करता है। तो हमें किसी भी सेवा को अगर हम किसी से हायर करते हैं तो हमें जरूर उसका बिल लेना चाहिए, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। और मैंने जो कैटल मेरी खराब हुई थी तो मैंने वो चेंज करवाई, क्योंकि पहले तो वो आना का नहीं कर रहे थे, फिर मैंने जब उनको कंज्यूमर फॉर्म में जाने की बात कही कि मैंने कहा अगर आप इस कैटल को नहीं चेंज करते हैं तो मैं कंज्यूमर फॉर्म में जाके आपके विरुद्ध केस करूंगी और आपने मेरे को खराब प्रोडक्ट बेचा है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही कोई चीज खराब हुई है।
1: बिल्कुल,
0: तो चाहे वो उसकी टेक्निकल वजह हो या कुछ भी वजह रही हो खराब होने की, उसको ड्यूटी बनती थी कि वो मेरी उस कैटल को बदले और या उसको रिपेयर करके दे, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। और जब मैंने उसको कंज्यूमर फॉर्म में जाने की बात कही तो फिर उसको लगा कि कहीं दिक्कत ना हो
1: जाए,
0: और उसने वो रिपेयर करने की बजाय उसके बदले में मुझे दूसरी कैटल चेंज करके दी। तो देखिए, हम अपने लिए जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपको ऐसे ही लेके चलेंगे वो, और वो मानते हैं कि कोई बात नहीं, काम चल रहा है, चलने दो, पर ऐसा नहीं करना है। और मुझे लगता है कि हमें भी अब बातों को थोड़ा सा विराम देना चाहिए, बातें बहुत लंबी हो रही हैं, तो एक प्यारा सा गीत अगर हम सुन लें।
1: जी बिल्कुल रुमा जी, गीत और देर किस बात की, क्योंकि हमारे हाथों में है ना ये प्यारा सा ब्रेक लेना। तो आइए दोस्तों, लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम में इस बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल सफर की ओर। एंजॉय कीजिए और बने रहिए 91.2 MHz पर।

0: 91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: तो आइए दोस्तों इस बातचीत के सफर को बढ़ाते हैं आगे और आप सभी को और ज्यादा गहराई यानी कि इस जानकारी की गहराई की ओर लेकर जाते हैं जो कि हमारे लिए खास खास बातें हैं। तो रूमा जी हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस एक्ट की विशेषता क्या है और साथ ही हम बात करें तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं, किस तरह से ये हमारे लिए काम करते हैं या किस तरह से हम अपने लिए जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग आवाज उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल रुचिका जी, सबसे मुख्य विशेषता तो इस अधिनियम की ये है कि ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है खराब उत्पादों के खिलाफ या खराब सेवाओं से बचने के लिए। जब भी हम किसी प्रकार का कोई उत्पाद खरीदते हैं या किसी प्रकार की कोई सेवा हासिल करते हैं तो उससे ये सुरक्षा प्रदान करता है। उसके अलावा हमें इसमें एक विशेषता ये भी है कि हमारी जो सुनवाई जो है वो प्राथमिकता के आधार पर होती है। जब भी हम कंज्यूमर फॉर्म का दरवाजा खटखटाते हैं तो हमारी बात को सुना जाता है और उसके निवारण के लिए जो है वो हर संभव जो है प्रयास किए जाते हैं। यहाँ पे उपभोक्ता और विक्रेता दोनों के बीच में बैठ के काउंसलिंग या फिर एक तरह से समझौता करवाने की भी बात की जाती है कि बातों को अगर सही मायनों में सही मानकों के आधार पर रखकर समझौता हो सके तो विवाद जो है वो आसानी से निपट जाता है। और तीसरा, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये 3 स्तरों पर काम करता है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। अगर किसी उपभोक्ता को कोई समस्या का समाधान जिला स्तर पर नहीं मिला है तो वो राज्य स्तर पर भी जा सकता है और राज्य स्तर पर भी नहीं समाधान होता है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज को उठा सकते हैं। और इसमें ये भी सुनिश्चित करता है कि जो विक्रेता है वो उत्पाद को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, वो कोई खराब उत्पाद तो नहीं बेच रहा है। दूसरा, वो सही मानकों पर हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से या हमारे उपभोग की दृष्टि से सही है या नहीं है, इन सब चीजों को वो सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ इसमें जो भी प्रोडक्शन हाउस हैं, जो भी उस सामान के प्रोड्यूसर हैं, जो भी उसको आगे वितरित कर रहे हैं जनता तक, उनके भी साथ साथ उन सभी सेवा प्रदाताओं को इसमें जिम्मेदार ठहराया गया है। जैसे मानो मैंने अभी कैटल की ही अगर बात करूँ तो मैंने कैटल ली थी तो कंपनी, किस कंपनी ने उसको बनाया, उसके बाद कौन उसका डिस्ट्रीब्यूटर था, किसके माध्यम से वो शॉपकीपर तक पहुंची। तो यहाँ पे सिर्फ शॉपकीपर ही लाइबल नहीं है उस समस्या का निदान करने के लिए। जिस कंपनी का मैंने प्रोडक्ट खरीदा है उसके जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके आगे जो भी दुकानदार है, वो कई सारे चैनल से होके आम जनता तक पहुंचती है उसके बाद ही। तो इसमें सभी का दायित्व जो है निर्धारित किया गया है, सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई चीज किसी उपभोक्ता तक खराब पहुंचती है तो उसका निवारण करने के लिए इन सभी को एकजुट होना पड़ेगा और सभी की जवाबदेही जो है उसमें बनती है।
0: जी बिल्कुल। तो रूमा जी आपने कहा कि इस ये जो एक्ट है ये 3 स्तरों पर काम करता है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और
1: राष्ट्रीय
0: स्तरीय। तो एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि ये हम सभी के साथ होता है। अब माना कि हमारी कोई 6,000 की चीज है ना, वो अगर इनकेस खराब हो जाती है तो अक्सर हमें यह लगता है कि हम आवाज उठाएंगे, केस लड़ेंगे तो पता नहीं 6,000 के कितने 1,000 लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम नहीं ले लें, जितना हम केस में पैसे लगाएं उससे बेहतर है कि हम, क्योंकि हमारा समय जाएगा, है ना। तो वहां पर मुझे ये समझना है कि हम अपने श्रोताओं को कैसे इस बात को बता सकते हैं, अपने दोस्तों को कैसे बता सकते हैं कि अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है।
1: बिल्कुल रुचिका जी, ज्यादातर जो हमारे उपभोक्ता होते हैं वो इसीलिए आवाज नहीं उठाते कि 4,000-5,000 या 6,000 के लिए हम कहाँ आवाज
0: समय जाएगा,
1: हम वकील हायर करेंगे कि उसको खर्चा देंगे और 6,000 के हमारे कितने ज्यादा पैसे लग जाएंगे और जो मानसिक वेदना हम सहेंगे, बार बार कंज्यूमर फॉर्म के चक्कर लगा रहे हैं, गवाह ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसका कितना सारा हमें नुकसान होगा। तो हम कहते हैं छोड़ो परे, क्यों हमने इन चीजों को इस चक्कर में पड़ना है। तो ऐसा नहीं है, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की सेवा लेता है या कोई उत्पाद खरीदता है और उसमें दिक्कत आ जाती है किसी भी प्रकार की, वो सही उन मानकों पे सही नहीं उतरी है जो मानक उस समय खरीदारी के समय बताए गए थे या सेवा प्रदान करते समय बताए गए थे, तो उस वस्तु का जो कीमत होती है उसके साथ साथ जो लिटिगेशन का जो खर्चा आता है, जो भी हम कंज्यूमर फॉर्म में एप्लीकेशन देते हैं उसका खर्चा, साथ ही साथ जो मानसिक और आर्थिक हमें नुकसान हुआ होता है कंज्यूमर फॉर्म, उसका भुगतान जो है हमारे उपभोक्ता को करवाता है, जो भी लिटिगेंट है उसको वो दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, कई बार 2 रुपए की चीज भी किसी के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत ला देती है और हम छोड़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपको किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो आप और जो आपका भी नियोक्ता है, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको अगर उसका भुगतान नहीं कर रहा है तो आप कंज्यूमर फॉर्म का जरूर रुख इख्तियार करें, क्योंकि वहाँ पे आपको लिटिगेशन एक्सपेंस के साथ साथ चीज़ की निर्धारित कीमत जो भी आपने पे की थी, जो आपके पास बिल उसका होना चाहिए, और उसके साथ मानसिक प्रताड़ना जो आपने झेली है उस सब का भुगतान जो है वो अक्सर कंज्यूमर फॉर्म के माध्यम से होता है। और अभी मैं एक कुछ समय पहले का एक उदाहरण दूंगी। हमारे बहुत सारी जो सहेलियां हैं, सखियां हैं, अपनी ब्यूटी को लेके बहुत कॉन्शियस रहती हैं। आप भी अक्सर पार्लर की सेवा लेती होंगी
0: जी।
1: तो अभी पिछले महीने मेरे एक दोस्त की बेटी का मैरिज थी उसकी, और उसने एक पार्लर में जाके अपना ब्राइडल फेशियल वो सारा जो भी करते हैं वो करवाया, और फेशियल वो सिटिंग लेने के अगले दिन उसका पूरे फेस में स्वेलिंग आ गई और रैशेज आ गए, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो गया कि 5-6 दिन के बाद उसकी शादी थी और उसकी हालत जो थी वो बहुत ही खराब हो गई। और ऐसे में आप देखिए उस लड़की का जिसकी शादी होने वाली है उसको कितना ज्यादा तकलीफ हुई होगी। उसने जब पार्लर में जाके बात की तो उसने कहा कि हमने तो सही प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे और हमने तो अच्छी सेवा दी है, और उन्होंने उसका कोई मुआवजा, कोई कंपनसेशन, और जो पैसे उसने 25-30 हज़ार रुपया लगाया था वहां पे वो कोई वापस नहीं किया। और उसके बाद शादी का मैटर निपटा और उसके बाद वो कंज्यूमर फॉर्म में आ गए हैं, और कंज्यूमर फॉर्म में आने के बाद जब उन्होंने उस दौरान की जो फोटोग्राफ्स थे, जो विल उसका था, वो सारा उन्होंने रख रखा था, वो पेश किया है, तो उस लड़की को अभी हाल ही में उस केस का जो है डिसीजन आया था, और उसमें उसको 50 हज़ार का जो हर्जाना है वो पार्लर की ओर से दिया गया है, साथ ही साथ जो केस का खर्चा था और ये सारा कुछ मिला के उसको जो है वो कंपनसेट किया गया। तो मुझे लगता है कि हमें लापरवाही अगर किसी सेवा में हमें मिलती है तो हमें आवाज़ तो उठानी चाहिए। और देखिए एक लड़की का इतना अच्छा दिन था, उसकी शादी का दिन जो था वो एक पार्लर की लापरवाही के कारण खराब हो गया, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब भी हम कहीं जाते हैं तो किसी भी प्रकार की सेवा हम करते हैं, चाहे वो स्किन ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो पहले स्किन टेस्ट होता है, लेकिन उनकी गलती ये रही थी कि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट वहाँ लड़की के ऊपर इस्तेमाल किए उन्होंने उसका स्किन टेस्ट नहीं किया, और ना ही उन्होंने जो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो नहीं देखे। और रुचिका, हमारी एक उपभोक्ताओं का एक ये भी बहुत बड़ा अधिकार है, जब हम कोई चीज़ लेते हैं, फोन आपने देखा होगा, फोन खरीदते हैं तो आप उसकी बहुत सारी फीचर्स देखते हैं, इसमें ये है, ये है, ये है, इसमें ये दिक्कत हो सकती है, तो ये हमारा राइट होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं वो हम ज़रूर उसके बारे में जानकारी हासिल करें, और ये हमारा अधिकार भी है किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी का हमें होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। तो कई बार हम शायद शर्म महसूस करते हैं, हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो शायद ये सवाल हम कर नहीं पाते हैं। तो जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया बहुत ही एक सही वाला, तो अक्सर बहुत से लोगों के साथ मतलब होता है, ऑब्वियसली जो है चीजें हाथ में नहीं होती हैं, कोई नहीं जानता है कि कौन क्या कब क्या हो जाएगा, लेकिन इन केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो हम यही सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम ठीक हैं, अब ठीक हो गई है सिचुएशन, छोड़ो परे, शादी हो गई, बात गई। लेकिन जो एक कहते हैं ना, फिर नहीं तो आगे वालों को फिर वो एक तरह से मतलब कि एक अपनी गलती को महसूस करने का मौका नहीं मिल पाता है।
1: बिल्कुल। और देखो जब भी हम कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा हम पैक्ड सामान खरीदते हैं उसके ऊपर उस प्रोडक्ट की डिटेल दी रहती है, उसमें कितना क्या है, कितनी क्वांटिटी में डाला गया है, कितना हम कंज्यूम करेंगे उसको तो उसका कितना हमें बेनिफिट होगा, अगर हम ज्यादा लेते हैं तो क्या नुकसान होगा। तो बहुत सारी चीजें हम जब भी सामान खरीदते हैं, हम डिब्बा जूस लेते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, आप भी अक्सर कई बार लेते होंगे डिब्बा बन जूस, हम सिर्फ जूस लेते हैं, प्राइस पूछते हैं प्राइस कितना है, पैसे दिए और पॉकेट में डाला चले गए, हम बिल नहीं लेते सबसे पहले तो हमारा कि हम दुकानदार से बिल नहीं लेते हैं। लेकिन घर पहुंचे, हमने वो डिब्बा बन जूस खोला पिया और उसके बाद हमें एलर्जी हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी खुद की भी लापरवाही। और हर उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए, हमें जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके क्या फीचर हैं, उनकी हैंडलिंग कैसे है, उनको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, और अगर खराब हो जाता है तो उसके बारे में हमें कहाँ पे कंप्लेंट करनी चाहिए। क्योंकि उपभोक्ता फॉर्म में तो हम बाद में पहुँचते हैं, जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले हम दुकानदार के पास ही जाते हैं। दुकानदार, अगर मैंने मानो फ़ोन ले लिया और मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो वो मुझे सर्विस सेंटर भेजेगा, फिर हम सर्विस सेंटर जाते हैं, वहाँ पे भी वापस आ गए, वहाँ पे भी हमारी चीज़ ठीक नहीं हुई, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? तो हम कंपनी को लिखेंगे, कंपनी भी अगर हमारी समस्या को हल नहीं करती है तो फिर लास्ट स्टॉपेज तो वही है कि हम उपभोक्ता फॉर्म का दरवाजा खटखटाएं और अपनी समस्या का हल करें।
0: जी बिल्कुल, फिलहाल कार्यक्रम में हमारी बातचीत का हल एक ही है और वो है एक प्यारा सा गीत। तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं इस बहुत ही प्यारी सी बातचीत के साथ, इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम के साथ, कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान। और आज के कार्यक्रम में हम बहुत ही खास बातचीत कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और हमने देखा कि अक्सर सच में हम सभी के साथ ऐसा होता है, हम कई बार 1 रुपए की या 2 रुपए की या 10 रुपए की चीज ले ले तो हमें ऐसी शर्म आती है कि भाई 10 रुपए की चीज के लिए हम बिलिंग लेने लगेंगे, बहुत मुश्किल काम है, तो हम फिर उस चीज को वहीं डंप कर देते हैं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है, कई बार अगर कुछ पंगा हो गया ना, कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो वो 10 रुपए भी हमारे लिए 10,000 के बराबर पड़ जाते हैं। तो ये बात समझना हमारे लिए जरूरी है, चीज छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन जो एक सही टाइम पे हमारे लिए जो सही डिसीजंस हैं, वो शायद हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो रूमा जी, अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो इस एक्ट के अंडर हमारे लिए या हमारे उपभोक्ताओं के लिए ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं, किस तरह से ये उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे?
1: बिल्कुल रुचिका, अगर हम उपभोक्ता अधिकारों की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में 6 अधिकार जो हैं वो सुनिश्चित किए गए हैं, जिनको ये अधिनियम जो है मान्यता देता है और उनकी रक्षा भी करता है। तो इसमें सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। जब भी हम कोई सेवा किसी से हासिल करते हैं या कोई चीज खरीदते हैं, तो उसमें उपभोक्ता की सुरक्षा का जो है उनको उचित मानदंडों पर देखा जाता है। अगर हम किसी मान लो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से घबराते हैं और वो ये कहते हैं कि जब भी हम पॉलिसी ले लेते हैं और जब वो मैच्योरिटी का टाइम आता है या बीच में किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, इंश्योरर की डेथ हो जाती है या कुछ भी, तो जो हमारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भुगतान करते समय जो हैं वो आनाकानी करती हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनको आती हैं, तो लोग इस तरह की सेवा लेने से घबराते हैं। लेकिन ये जो अधिनियम है वो सुरक्षा देता है, जो भी आप उत्पाद खरीदते हैं, जो भी आप सेवा ले रहे हैं, वो सुनिश्चित करता है कि आपके साथ किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। और दूसरा इसमें सूचना का अधिकार है। अभी मैंने इंश्योरेंस की बात करी, तो जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो मेरा ये अधिकार है कि इंश्योरेंस करते वक्त जो भी एजेंट है या जो भी बीमा कंपनी है, वो हमें उस इंश्योरेंस के अंदर हमें क्या क्या सुविधा मिल रही है, किस किस तरह की उसमें नॉर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं, उनके बारे में वो हमें विस्तार से बताए, या फिर अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी जो है वो हमें होनी चाहिए। और दूसरा चुनाव का हमें अधिकार है। अब मेरी मर्जी है, मैं फोन लेने जा रही हूँ तो बहुत सारी कंपनीज हैं, या अगर मैं घर के लिए किराना ही लेने जा रही हूँ तो वहां पे भी मेरे लिए एक चुनाव का अधिकार है कि मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदूं या फिर मैं दूसरे प्रोडक्ट खरीदूं, या मैं अपने लिए क्या चीज़ खरीदना चाहती हूं। मेरे को बहुत सारी अगर चीज़ें मेरे सामने आती हैं, कपड़ा लेने हम जाते हैं बाजार में, वहां पे भी आपने देखा होगा, और हम महिलाओं की तो वैसे भी रुचि का आदत होती है कि हम एक सूट लेने जाते हैं और 10 सूट हम
0: पसंद करते जाते हैं।
1: तो ये चुनाव का अधिकार है हमारा, और हमें देखो दुकानदार भी हमें मना नहीं करता है, वो हमें थोपता नहीं है कि यही चीज आप रखो या यही लो, तो ये हमारा राइट भी है। और हम महिलाओं का ही राइट नहीं है, पुरुषों का भी है, सभी बच्चों का भी, सबका राइट है कि जब भी हम बाजार में कुछ चीज अपने लिए जाए तो उसमें हमें वैरायटी के साथ साथ अगर विक्रेता हमें दिखाता है तो उसको चुनने का हमें अधिकार होना चाहिए, जबरदस्ती हम पे कोई भी उस चीज को ना थोपे। और सुनवाई का अधिकार भी हमारा है, हर एक उपभोक्ता का। मैंने कोई चीज खरीदी है, उसमें कुछ घर आती हूँ, मुझे लगता है अरे ये तो खराब हो गई, मुझे जो हमारा जिससे हम सामान ले रहे हैं वो भी हमें सुने, हमें क्या समस्या आई है, और आगे जो भी उसके प्रोड्यूसर हैं, जो भी आगे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी हमारी बात को सुने। और उसके बाद अगर हमारी समस्या सही पाई जाती है तो उसका निवारण भी वही करेंगे, और निवारण का भी अधिकार है हमारा, वो हमें निवारण करे। दूसरा सबसे बड़ा जो मेरे को उचित और अच्छा जो इस अधिनियम का जो प्रावधान लगता है वो है शिक्षा का अधिकार। और हर एक जो हमारी प्रोडक्ट है, किसी भी प्रकार की सेवा है, उसके बारे में हमें क्या मिल रहा है, किस तरह की सेवा मिल रही है, ये जानना हमारा अधिकार है। इसके साथ साथ आम पब्लिक तक हमारे उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं वो हमारा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छे अधिकार जो हमें इस अधिनियम की विशेषताएं भी कह सकते हैं और आम पब्लिक के जो अधिकार हैं किसी भी सेवा के बदले में या किसी भी चीज़ को खरीदने के बदले में उसकी जानकारी के बारे में, तो ये इससे हम क्या है कि एक सही चीज़ का चुनाव कर पाते हैं और आने वाली किसी भी समस्या को आसानी से हम निपटा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों रूमा जी ने बहुत ही अच्छे से बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को बताया कि कौन कौन से अधिकार हैं और किस तरह से ये हमारे लिए काम करते हैं या हम उसके लिए काम कर सकते हैं, यानी कि अधिकार तो हमारे लिए हैं तो आवाज उठाना भी हमारा राइट है, तो हम कैसे उठाएं आवाज को ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा तो आपके लिए क्या ही लड़ेगा। एक ही बात बोलना चाहेंगे कि जब तक खुद आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा भी नहीं करेगा। जैसे आप खुद को, क्योंकि अक्सर हम ऐसा करते हैं, खुद को हम हमेशा अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो करते हैं, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद को कम समझते हैं, कम अपनी मतलब जो एक मोटिवेशन है उसे लो करते जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक अहमियत है और अपनी इम्पोर्टेंस है, तो अगर आप ही नहीं उसे समझ पाएंगे तो दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। इसलिए अपने आप को समझो, अपने आप की वैल्यू कीजिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत ही प्यारी और बहुत ही खास बातचीत की है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि बिलिंग लेना, जो भी हमने आज के कार्यक्रम में बात की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए छोटे से छोटे सामान की जो बिलिंग है वो बहुत मायने रखती है। कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बिल जो है आपकी हेल्प कर सकता है और आपको मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। तो रूमा जी, मुझे लगता है कि अब समय हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का।
1: बिल्कुल रुचिका, समय हो चुका है, लेकिन
2: है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
3: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
2: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहाँ पहुँचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: Thank you.

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

श्रोताओ 91.2 MHz ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

कानवी दशमलव तो मी का हर्ट्स पर ये है तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई यो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक ताशो तो पहले तो तुहां सारे ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो हाँ सारे ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा कामकार है से करा दे होने न कामकार भी करा कने माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर कने भी जुड़िया। इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। ता इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ने वास्ते जेड़ा हाँ दा नंबर है नंबर तुहां तक पहुँचाइंदे न फिर तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे। नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कने हाँ कर देना कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत कने। फिर बाकी दियाँ जेड़ा गल्ला बातें न से तुहां तक ले करी होंदे न चल देना कर देना अपने कार्यक्रम का आगाज इस गीत कन्नै।

0: ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे शुरुआत तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ चुके होने न कने अगर नहीं जुड़े न तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़िया जुड़ने वास्ते जड़ा हाँ का नंबर है सिर्फ ही तो हाँ तक पहुँचाई दे नंबर है 7018117091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कने आज कने दिने दी यहाँ गाल कन 29 मई 2026 दी शुक्रवार दी दिन तो हर दिन अहाँ वास्ते खास हुंदा आज कना जिहड़ा दिन है सभी तुहां वास्ते खास है कने अहाँ दे जिहड़ा श्रोता न सभी जरूर अहां कन्ने जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्ने गल बात।
1: हेलो मैम जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी।
1: और मते दिन बाद होया संभार के तोड़े ना
0: जी स्वागत है जी तोहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला जी।
1: बड़ा बड़ा धन्यवाद तोहंदा आज मते एक दो महीने बाद होई गल तोहना
0: जी ठीक ठाक है ना।
1: और मैडम जी इलेक्शन कदे की होए
0: जी इलेक्शन ता ठीक

0: वीडियो कॉल
1: हाँ मतलब उधर प्रोग्राम या कॉल
0: जी
1: स्टूडेंट या कोई बुजुर्ग था बड़े ख्याल लगे मुझे आपकी।
0: जी फेसबुक यूट्यूब पर जड़े से वीडियो
1: हाँ
0: डलते ना
1: यूट्यूब पर
0: जी।
1: मैडम सर्च करके ना बड़े ख्याल
0: जी जी
1: रुचिका मैडम बैठे है फिर
0: जी
1: मनीषा मैडम सचिन
0: जी
1: जी। हाँ
0: जी जी
1: जी हाँ जी हाँ मैं पहली बार देखिया कल। हाँ
0: जी
1: जी
0: जी
1: और
0: ता
1: मैडम जी ठीक ठाक करे सब
0: हाँ जी ठीक ठाक हैं जी। तो हाँ दसा
1: मौसम
0: मौसम
1: थोड़ा
0: कद
1: ठंडा हो मौसम मैडम जी बड़े ख्याल आता बढ़िया मौसम हो गया।
0: जी बढ़िया हुई
1: हाँ
0: है
1: जी हाँ जी मौसम थोड़ा ठंड हो रही है बड़ी गर्मी हो रही है मैडम जी।
0: जी गर्मी तो ज्यादा हुई थी ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी हाँ
0: जी तो आज तो
1: जी हाँ
0: हाँ
1: जी
0: अपना परिचय भी दसी दिया कि कुथु दे
1: तो
0: रहने
1: आप
0: हैं
1: पछाणा लाओ ना थोड़ी आवाज पा रही है बीमार थे ना 15-16 दिन ना आवाज
0: जी
1: पा
0: जी
1: रही है ना
0: जी
1: नरवाने ते राकेश जी।
0: जी अच्छा राकेश जी नरवाने ते बोला
1: हाँ
0: दे
1: हाँ जी
0: जी तो नरवाने
1: अजो
0: वाले
1: आज
0: दे
1: बड़ी सोच
0: क्या
1: होने मैडम जी। मैडम जी ठीक ठाक है लग्या काम पंचायत बनी है बढ़िया।
0: जी
1: हाँ जी आज
0: जी तो आज तुम कुंडिया गीत सुनना पसंद
1: सुनना
0: करके
1: मैडम जी बता देना बाद बस चली चंबा ते चौवाड़ी चौवाड़ी।
0: जी बस चली चंबा ते चवाड़ी सुनना है
1: हाँ जी मैडम जी बड़ा बड़ा धन्यवाद तुम्हारा।
0: जी। तुहां दा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी जुड़ने
1: हाँ जी
0: वास्ते
1: मैडम जी।
0: जी। ये है तुहां सारे दा अपना रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर दे न गल बात। हेलो
1: नमस्कार महाराज जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: बिल्कुल ठीक ठाक महाराज।
0: जी। तुहां कुथु ते बोला दी कने तुहांदा नां की है जी।
1: मैं जी डाडे से बोला था मेरा नाम हरदेव
0: जी
1: है
0: डाडे दे बोला दे हरदेव
1: जी
0: जी। हरदेव जी क्या हाल चाल है डाटे आले दे
1: बिल्कुल ठीक ठाक महाराज जी। हुई हुई बरखा हुई ही है निम्न
0: जी
1: धुप लगी पई है। हाँ
0: जी अच्छा बरखा जेड़े से हो यही
1: जी
0: और
1: बड़ी
0: मैं
1: तो नहीं हुई
0: डाटे
1: पर ठंड दे पई है नहीं
0: जी थोड़ी गर्मी ते राहत मिल गई ना जी
1: मिली। हाँ जी
0: जी कने और जेड़े से देना है तिदी वास्ते इतनी खास तो नहीं हुई ना जी।
1: नहीं नहीं नहीं महाराज इतनी नहीं हुई थोड़ी
0: जी थोड़ी थोड़ी हुई मतलब
1: थोड़ी
0: मौसम
1: हुई है पर कुछ ही खरी हुई है जनाब।
0: जी।
1: जब मलांगे हमें मलां तो खरी बरखा हुई
0: जी अच्छा
1: है
0: मला ठीक ठाक हुई है
1: ही खरी बरखा तो एक फोन आया हाँ बंदड़े के किनारे पालमपुरे बोले साहेब खरी बरखा हुई
0: जी। ता
1: है।
0: धर्मशाला साइड ये थी थोड़ी थोड़ी हुई है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी उपली साइड ज्यादा हुई है ना बरखा।
1: हाँ जी कुछ ही ज्यादा कुछ ही काटे
0: जी जी मौसम है ना जी
1: जी महाराज
0: जी और घर सारे ठीक ठाक हैं जी
1: जी महाराज जी बिल्कुल ठीक ठाक
0: जी
1: जी।
0: तो आज तो हाँ क्या काम कार छेड़िया क्या करा दे आज तो हाँ
1: महाराज जी मैं कोई काम काज नहीं छेड़िया हैं बस मैं घर ही हैं।
0: जी अच्छा घर ही रेस्ट करा दे
1: जी
0: जी। जी रेस्ट करना भी जरूरी है ना जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: जी ता रेडियो सेट जड़े से तो हाँ ऑन करी दे होने कने रेडियो ने मन जड़े से अपना लगे है ना जी।
1: जी महाराज
0: जी चलो रेडियो सुन दे ना ता अच्छा कदिया लगदा तो हाँ जो क्योंकि हर
1: अच्छा
0: कुछ
1: लगता महाराज जी बिल्कुल अच्छा लगता सोने सोने भजन होंगे हैं
0: जी
1: सोने सोने गीत होंगे।
0: जी
1: एक ब्यागा मैं लाया हाँ रेडियो चालू एक भजन आया 5:58 पर से खत्म हो गया भजन
0: जी
1: तो असर मिल गया मेरे माता दिया तस्वीर मैं ध्यान तेरे वाल पाना
0: जी जी अच्छा
1: है।
0: अच्छा
1: हाँ जी सह सुनना जी मैं
0: जी जरूर ये भजन जेड़ा ऐसे तुहां तक पहुंचाना है जी।
1: जी महाराज जी
0: जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा
1: धन्यवाद महाराज।
0: जी। ये है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ताशो तो बढ़ देना अपने कार्यक्रम दे सफर जगह कन्ने अगली जेड़ा पहली फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा देना। गीत संगीत सुनना भी यहाँ वास्ते ज़रूरी है कन्ने जेड़ा तुहंदी गल बात है सभी जरूरी है। तो ये गीत संगीत ये फरमाइश तुहां तक पहुँचा देना तुहां सारे भी इस फरमाइशा जो इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। जरूर तो हाँ ये सोचा दे उन्हें ने कि ये फरमाइश हाँ जो कुते आई हुए कन्या तक कि ना ये फरमाइश चिड़े से पहुँची हुए दर्शकों ये फरमाइश जहाँ तक पहुँची हुए बरसैप दे माध्यम ने कने तिना दा ना वे चरण दास जी कने से रहने वाले न कन्यारा थे तो तिना तक कहाँ ये तिना दी फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय की थी। कने आजकना जिड़ा दिन है से बेहतर अहाँ वास्ते खास है। वैसे तो हर दिन अहाँ वास्ते खास होंदा, खास दिन अहाँ किस तरीके ने बनाई सकते से यहाँ पर निर्भर करता है। अहाँ हमेशा ये सोचते हैं कि यहाँ वास्ते जिड़ा संपत्ति है या अहाँ वास्ते दौलत है या धन है से अहाँ वास्ते सब कुछ है, पर तुहां जिहड़ा से अगर ये सोच रखते न तो बिल्कुल गलत जिहड़ा सोच है से अपने अंदर रखते न। परिवार अगर अहां है तो सही अहां दी सबसे बड़ी दौलत है, सही अहां दी सबसे बड़ी धन है, सही अहां दा सबसे बड़ा एक संपत्ति है। परिवार जिहड़ा से तुहां सारे जे पता है कि अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है, पर प्यार भावना अगर अहाँ एक दूए अंदर रख दें ता ही जिड़ा परिवार दी जिड़ा अहमियत है अहाँ समझी पाते न। हर टाइम अहाँ परिवार ऊपर भी गलबात करते न, परिवार ऊपर गलबात करना बनता है ना। जिंदगी दा जिड़ा सफर है से परिवार कन्नै ही जुड़िया है, जिड़ा अहाँ दे रिश्ते न तिना कन्नै ही जुड़िया है। जिंदगी दा सफर अगर अहाँ परिवार कन्नै अपना जिहड़ा समय है से दिंदे न या तिना जो समय दिंदे न, कई बार होंदा ना कि अहाँ अपना ज़्यादातर समय अगर अज कने दौर दी अहाँ गल करन तो कुथी ना कुथी मोबाइल फोन च हम अपना जिहड़ा समय है से दिंदे न, या अपना पहला काम जरूरी है, चलो काम करना भी अहाँ वास्ते जरूरी है पर अपनी फैमिली जो समय देना भी अहाँ वास्ते जरूरी है। अगर अहाँ फैमिली कन्ने गलबात करते न या कोई भी तनाव है या कोई भी टेंशन है से दूर भागी आती है जल वहाँ फैमिली कन्ने समय बिताते न, तो अहाँ भी तोहनिया जेड़ा प्यारियां प्यारियां फरमाइशां से तुहां तक पहुँचा देन कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकते। फिर ते थोड़ा दे आगे बढ़ते न कने थोड़ा जहा घूमना फिरना भी तो बनता है ना। जल तो हाँ परिवार कन्ने घूमना फिरना जाते न तो थोड़ा जहा जिहड़ा माहौल है ना से चेंज हो जाता है, तो हाँ भी कार्यक्रम का जिहड़ा माहौल है से चेंज करते न कने तो हाँ जो ले चलते न गीत की ओर सुन देनी साहब प्यारिये दिया फरमाइशा जो।

આ બોલાદીન રેડિયો ગુંજન ધર્મશાલા તે કને તો હા સારે ઇસ વક્ત કાર્યક્રમ સુના દેન આપની રેડિયો તો શશિ કને ઇસી કને તો હા સારે હી સુન્યા ઈ પ્યારા દિયા ગીત પ્યારી દે ફરમાઈશ ઇસ ગીત દી ફરમાઈશ હા જો આયુ વે નરવાણા તે કને તિના દા નાવે રકેશજી રકેશજી તક કહાં એ ગીત ચીડે સે પહોંચ્યા કને તો હા ભી જરૂર जड़ा घूमना फिरना है से करी ले आना है, क्योंकि घूमना फिरना हाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कने जालू परिवार की अह गल करना तो परिवार जड़े से अह दी जिंदगी बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। परिवार जड़े से अह वास्ते अगर अह मिली जुली करी रहते न या परिवार की जड़ा अहमियत है से समझते न ताई परिवार जड़े से अपना जेड़ा कोई भी काम है अगर अहाँ मिली जुली करी करा देन तो इस काम करने दा बिल्कुल पता जेड़े से नहीं चलता। कने अगर अहाँ तीसी कम्मे जो किले करा देन तो इस कम्मे करने च थोड़ा दिया टाइम भी लगता, कने इस कम्मे च करने दा जेड़ा मजा है सभी नहीं होता, क्योंकि जालू अहाँ काम कर देन या खाना सोगी बैठी करी खान देन तो इस खाने खाने दा भी अलग ही जेड़ा अपना ही मजा जेड़ा से होंदा। कने अपने दा चालू प्यार एक दुए मिली आंदा तो कुथी ना कुथी जेड़ा जिंदगी दा सफर है से और भी प्यारा जेड़ा से लगता है। आंदा परिवार चाहे अहाँ पुराने समय की गल करिए तो ज़्यादातर संयुक्त परिवार जड़े से होंदा था, पर आज के दौर की अहाँ गल करिए तो एकल परिवार ज़्यादातर अहाँ दिखते न या एकल परिवार ही जड़े से हैं

लगभग थोड़े बहुत जड़े से संयुक्त परिवार भी होने न प्यार भावना जड़े से एक ही दूबे अंदर होनी है। पर ज़्यादातर हर कोई यही सोचता है कि यहाँ किले रहना जड़े से पसंद कर देना। पर सही अगर अहाँ खाना किले खाँदे ना तो से अहाँ जो अच्छा नहीं लगता है कने सही खाना अगर अहाँ मिली जुली करी इक्की दुए सोगी बैठी करी खाँदे ना तो से खाना भी अच्छा लगता है कने पेट भरी करी चिड़े से अहाँ खाँदे ना तो दिखा थोड़ा दिया फर्क ता है। पर सही है ना कि आज के दौर च हर कोई अपना जिड़ा फायदा है से दिखता है। हमेशा अहाँ फायदा दिखने दे चक्कर चौंदे हाँ ये नहीं सोचते कि अपने दा प्यार होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जलू समय जड़े से अहाँ दे हाथ ते निकली आंदा तलू अहाँ जो समझ आंदा कि नहीं परिवार जड़े से अहाँ दी जिंदगी च कितनी अहम भूमिका अदा करता है। तो आशुता तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने जुड़ सकते कन्या हाँ करने गल बात चिड़े से जरूर करी सकते अपनिया चिड़ा याद आने से जरूर अहाँ कन्ने साझा करी सकते। ता साझा करने वास्ते जिड़ा अहाँ दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाई देना ता तुहां नंबर चिड़े से जल्दी जल्दी लिख ही लिया या अपने मोबाइल फोन से डायल करी लिया क्योंकि मोबाइल फोन नंबर डायल करके ताई तो तुहां इस नंबर पर अहाँ जो कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते। नंबर है 701-8117091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। थोड़ा दिया कार्यक्रम च अगे बढ़ते ना थोड़ा दिया जिड़ा रौनक वाला माहौल है से फ्री ते लेकर आते ना अगर तो हाँ सारे का ही मन करा दे कि थोड़ा जहा डांस करना है। डांस करना हर किसी जो पसंद होता जिंदगी का सफ़र सुहाना ही बनाना है ना अपने कन्ने कन्ने थोड़ा जहा डांस करी करी या घूमी फिरी करी अहाँ अपनी जिंदगी दे सफ़र जो और भी जड़ा बेहतर है से बनाई सकते। सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइशा जो।

दर्शो तो तुह सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश। ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने कनेतीना दा नाम है इंदू जी कने से रहने वाले न सिद्धवाड़ी ते तिना तक कहाँ ये फरमाइश तिना दी पहुँचाई कने तुहा सारिया भी इंजॉय की थी कने यहाँ जेड़ा गलबात करा देन से करा देन परिवार परिवार जेड़ा इस यहाँ दी जिंदगी च कितनी अहम भूमिका अदा करता है। तो श्रोताओं संस्कारां दी अहां गल करिए तां परिवार जिहड़ा से हमेशा अपने बच्चों जो अच्छे संस्कार अच्छा व्यवहार जिहड़ा से दिंदा है बच्चा जिहड़ा से परिवार ते ही अच्छे संस्कार जिहड़ा से सीखता है कने अच्छी जिहड़ा शिक्षा से ग्रहण करता है क्योंकि माता पिता जिहड़े से अपने बच्चों वास्ते हमेशा अच्छा सोचते हैं पॉजिटिव सोचते हैं कने तिना जो अच्छे जिहड़ा संस्कार हैं से देंदे हैं। पर कुथी ना कुथी आज के दौर की अहाँ गल करिए ये चीज़ जिहड़े से बड़ी कम जिहड़े से अहाँ जो दिखने जो मिला दी बच्चे जिहड़ा न चाहे से बड़े न चाहे बच्चे जिहड़ा न बड़ियां जो रिस्पेक्ट देना जिहड़ा से बिल्कुल भुली हो थोड़ा दिया अपने जिहड़ा संस्कार है अपना जिहड़ा व्यवहार है किस प्रकार जिहड़ा से बड़ियां ने गल करनी है से थोड़ा दिया दिखने जो अहां जो नहीं मिला था। अगर अहां थोड़ा दिया पीछे हटी करी गल करिए जिहड़ा दादा दादी अहां पहले भी गल की कि संयुक्त परिवार जिहड़ा से अहां जो मिलते थे कने ज़्यादातर संयुक्त परिवार च क्या जिहड़ा माहौल रहिंदा था या क्या प्यार भावना दिखने जो मिलती थी कने बच्चे जिहड़ा न से क्या सीख जिहड़ा माहौल रहिंदा था या क्या प्यार भावना दिखने जो मिलती थी कने बच्चे जिहड़ा न से क्या सीखते थे। अगर दादा दादी एन सभी बच्चों जो कहानियाँ सुनाते थे कने कहानियाँ सुनाई करी ही जिहड़ा से पूरा अपनी गल जो दसते थे किस प्रकार जिहड़ा कहानियां न से बच्चे भी सुनते थे कने कहानियां सुनी करी भी अपनी

वेडांगला बातन से समझते थे। परिवार च संस्कार दी अहां गल कीती, जिहड़ा संस्कार हन से अहां जो परिवार ते ही मिलते न, कन्नै जिहड़ा एक सुख दुख दा जिहड़ा सच्चा साथी है से अहां दा परिवार ही है। चाहे अच्छा समय है चाहे बुरा समय है, परिवार जिहड़ा है से अहां दा हमेशा साथ जिहड़ा है से जरूर दिंदा है। क्योंकि कई बार होंदा ना कि अहां दा जालू अच्छा समय चल जांदा या अहां दा अच्छा टाइम है तां हर कोई साथ जिहड़ा है से दिंदा है, पर जालू बुरा समय चलदा है तां तालू सारे ही जिहड़ा पिछे है से हटी जांदे न, कन्नै अहां दा जिहड़ा परिवार है से हमेशा अहां कन्नै खड़ा रहिंदा है। तो दिखा परिवार की अहमियत समझना तुहां वास्ते भी बड़ा ज़्यादा जरूरी है, कन्नै हमेशा समय जिहड़ा है से अपने परिवार जो जरूर दिया, कन्नै माता पिता जिहड़ा से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करते न। मैं तो हमेशा बच्चें जो यही बोलना चाहूँगी कि अपने माता पिता दी हमेशा रिस्पेक्ट जिहड़ा है से जरूर करा। अहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो थोड़ा देया गया बढ़ाते न, कन्नै अगले जिहड़ा फरमाइश है अगला जिहड़ा भजन है से तुहां तक पहुँचाना है, कन्नै तुहां सारियां ही इंजॉय करना है।

कानवी दशमलव 2 MHz पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दोष शशि कन्ने कन्ने तो हाँ इसी कन्ने भजन सुनिया। इस भजन दी फरमाइश हाँ जो आई हुए डाढ़ते कन्ने तिना दा नावे हर सिंह जी तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाया कन्ने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया कन्या जहाँ जिड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दिन से करा दिन परिवार के उपर तो हाँ सारे जो ही पता है कि परिवार जिड़े से आंधे जीवन च बड़ी अहम भूमिका जिड़े से अदा करते है। चाहे खुशी है चाहे गम है हर जगह परिवार जिड़े से आँ दा हमेशा साथ जिड़े से दिन दे खुशियाँ जिड़ा न अगर तो हाँ चार दुगना ज़्यादा करना चाहते न तो अपने परिवार जो समय दिया तिना कन्ने गलबात जड़े से जरूर करा पर अजकने दौर दी हाँ गल करिए बच्चे जड़ा ना ज़्यादा अपना समय जड़े से मोबाइल फोन च दे देना या फैमिली कन्ने बैठे भी हैं फिर भी अपना जड़ा समय है से मोबाइल फोन च दे देना फैमिली जड़े से अपनी गलबात करा देना कन्ने से अपना टाइम मोबाइल फोन च या सोशल मीडिया पर ज़्यादा जड़े से दे देन तो थोड़ा दिया सोशल मीडिया जो साइड रखा कने अपने परिवार जो समय जड़े से जरूर दिया परिवार जो समय दिन देन तो तुहंदा जड़ा चेहरे दी स्माइल है से ज़्यादा चार दुगना जड़े से ज़्यादा बढ़ी आती है कने जड़ा तनाव है से आजकल हर कुसी च दिखने जो मिला दा तनाव छोटी छोटी गल्लां दी जिड़ा टेंशन या तनाव जिड़े से अहां लैंदे न तो सभी अगर अहां परिवार कन्ने गलबात करदे न तो सभी जरूर जिड़े से दूर हो जांदी है तो समय देना तुहंदा काम है कन्ने परिवार दी अहमियत समझना भी तुहंदा ही काम है कन्ने अहां थोड़ा दिया कह वरदे न क्योंकि कार्यक्रम च समय जिड़े से थोड़ा दिया वे यानी कि कार्यक्रम च समय जड़े से बचे 10 मिनट तो इसी कन्ने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न तुह सारे भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा।

श्रोता तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया भजन। इस भजन की फरमाइश अहं जो आई वह व्हाट्सएप के माध्यम ने कने तिना दा नाम है राधा कश्यप जी कने से रहने आए न कांगड़े ते तो तिना तक अहाँ ये गीत ये भजन पहुँचाया कने तुहां सारिया भी इंजॉय किया। तो श्रोताओं पैसा ही अहाँ वास्ते सब कुछ नहीं है। हर कोई ये सोच लेकर ही बैठे कि अहाँ पैसा है तो अहाँ सब कुछ है, पर जिंदगी का जिहड़ा सफ़र है ना, ठीक है पैसा भी ज़रूरी है पर हर जगह पैसा ही कम जिहड़े से नहीं होता। अगर इंसान का जिहड़ा सहारा है ना से अहाँ जो मिली आता है ना तो सभी अहाँ वास्ते बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। पर अजकने दौर की अहाँ गल करिए तो कुछ ना कुछ हर कोई ये सोच रखी करी चलता है कि पैसा हल है तो हल सब कुछ है। पर पैसा पैसा तो हल है पर पैसे ने तुहां परिवार या जिहड़ा रिश्ते न से तो नहीं खरीदी सकते ना। से तो अपनापन एक ही दुए अंदर होगा ताई तुहां अपने परिवार की अहमियत समझी सकते कने ताई जिहड़ा सुख दुख है से एक ही दुए कन्ने सांझा करी सकते। तो परिवार का जिहड़ा अहां दे जीवन च बड़ा ज़्यादा रोल है। या अहां ये बोली सकते कि जिहड़ा परिवार है से अहां वास्ते एक अनमोल तोहफा है। चाहे तुहां कोई भी रिश्ते नहां दे या परिवार है तिना दा अहां दे जीवन च बड़ा ही ज़्यादा महत्व है अगर तुहां समझदे न। समझने ने हर चीज़ अच्छी लगती है कने अगर ना समझ तो कुछ भी अच्छा जिहड़ा से नहीं लगता है। तो इसी कन्ने थोड़ा दे अग्गे बढ़दे न कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचांदे न।

पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो हाँ सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से तो हाँ तक रहेंदा है 2 से 3 बजे तक समय जेड़ा है से यहाँ जो उन बोला था कि तो हाँ इस कार्यक्रम ते जेड़ा अनुमति है से ले लिया ता जरूर इस कार्यक्रम ते अनुमति लैन देन तो हाँ सारे भी अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा कने अपने दा ख्याल भी जरूर रखा कने रेडियो गुंजन धर्मशाला सुनते रहा।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: Thank you.

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ,

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने जहां।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट्स

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली
4: हाँ?
5: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

नमस्कार श्रोतों, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और आऊँ सचिन कपूर हाजिर हो चुका हूँ तुंदे सभी रे रेडियो सेट में। क्या हाल चाल ने श्रोतों, उम्मीद करना हूँ तुंदे हाल चाल खरे भुने तो सब ठीक भुने, अपने घर खुश भुने, तंदुरुस्त भुने हिन और मस्त भुने हिन। सब चीज़ा करना बहुत ज़रूरी है। एक कार्यक्रम 5 बजे तक बिल्कुल लाइव चलना है श्रोतों, इस कार्यक्रम में तो है जुड़े अच्छा बने अच्छा और तत्वों बाद श्रोतों चाहिए तो वाट फिर यह बढ़ना है, लेकिन इस अपने गाद्य कार्यक्रम हो गए कि ऐसा ज़रूर जुड़े अच्छा और जुड़ने वास्ते तो एक कॉल कर सकते हैं 7088889 पर। नंबर अक मौके फ्री तू हो गए शेयर कर लूँ और साझा कर लूँ 7088889 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं, अपने क्षेत्र की जानकारी जरूर वो के साझा कर सकते हैं। छोतों एक अलारा खास ख्याल रहे कि जानकारी की ऐसा साझा करने लायक जरूर भुआ है ना जी, रेडियो मंच दस ने लाइक किया सो जरूर भुआ। तो बहरहाल दिने बरखा बचोरे आता काफ़ी ज़्यादा राहत किया सो धर्मशाला में आ मुड़े या धर्मशाला रहे मनु जो और इवन की जो बाहर रहे मनु धर्मशाला में रेव कर दे तीनों भी। इस समय शोधों 17 डिग्री सेल्सियस रे आसपास आ तापमान जी, बिल्कुल 17 डिग्री सेल्सियस रे किया सो बिल्कुल आसपास आ तापमान शो तो ना मेरी गल करूँ तो ना मैं इस समय किया सो 55% हाँ शो तो इंदे अपने धर्मशाला रा मौसम जो ऐसा है तुसो गे शेयर करो आशो तो और तू सब भी दसो हा। अबे तो सब श्रोता वो गे जुड़ सकते हैं कुछ नोई ताजी की असो हुण आई सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी असो गे शेयर कर सकते हैं साझा कर सकते हैं और शर्ते है गल्ला रा खास ख्याल रहे श्रोतों खास ध्यान रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर बहुत जानकारी किया सो दसने लाइक किया सो जरूर वो है ना ए मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदा शो तो ई सो टीका चतैड़ मा चतैड़ पंचायत आऊँ बोली सकता चतैड़ पंचायत में किया सो रिजल्ट निकलो है शो तो और जो प्रधान आ सो रानी देवी है और जो प्रधान आ सो स्लेड़ गोदाम तो साजन हिन है ना। चलिए युवा शक्ति किया सो भी आया और जो जितने भी प्रत्याशी बाकी जो हारे ये सब भी हमें बोलना चाहना कि हारे ना सोचने की हार हार में भी इंसान की सो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है ना, कुछ ना कुछ चीज़ है सो ज़रूर एनालाइज करता और सीखता है। हार जो सिर्फ हार मत मना ये सोचा कि तो है क्या एनालाइज करो और क्या चीज़ है सो एनालाइज करे और मुझे लगता है एक तरह प्रतीक किया सो इस चुनाव में मोड़े को गुणा सभी जो है ना कि एक तरह प्रतीक किया सो गुणा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताइए जी आगाज करी लेंदे हैं कार्यक्रम रहा और फिर आगाज तो बाद इंदे श्रोतागण रे जो फरमाइश है सो फरमाइश अभी ऐसे ज़रूर पूरी करनी तो ये सब जुड़ी सकते हैं जनाब 7088889 पर। नंबर एक मुके फिर आऊँ तू हो गए शेयर करनो साझा करनो हाँ 7088889 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत कैसे होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी अब हो गए बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आइए जी आगाज कर दिन कार्यक्रम रे गीत दसोगे

0: शोता पलते जिंदगी मंच हार और जीत दुईता पहलून, दुख और सुख दुईता पहलून है ना। इंसान रे ना मानसिक जो संतुलन होंदा सो अच्छा रहना चाहिए। मेंटल पीस पर आज असू गल करनी है शोतों, सो इंसान रे की सो बेहतर रहना चाहिए। बाकी सब काम बुझ गए थे। और जने स्कूल पढ़ता था मेरे एक पीटीआई थी है सुविंदर जी, सुविंदर मास्टर धौलाधार स्कूल है, वो पढ़ रहा मतलब 10वीं 3rd तक कर रहे में, और +1 +2 मेरी के बी में वो छोरे केंद्र विद्यालय योलगंड में था। तेने आई थिंक है 9th या 8th में थी है शायद, हाँ 8th में थी है। था मैं ये गलत सो शायद पहले भी होना हो रहा था तिन्या ना, कुछ कोइंसिडेंस हुआ था तो तिन्या बोलो तो कि कसी बिना भी किया सो कोई काम ना रुकंदा है ना। ऐसा नहीं कि अगर ऐ ना बोले जिंदगी इंदे बिना कोई काम रुकेगा ना, या इंदे बिना कस की कोई परेशानी ही नहीं है। परिवार जो इंदे है मौ जो खास कर इंदे है परिवार जो इंदे है परेशानी, लेकिन जिंदगी ता जीने बिना है ना, और सो जीना ही पेंदे है। बेशक तो है हर रोज़ बेहाल बुझ करी जिया, बेशक तो है हर रोज़ किया सो जी मर्जी टेंशन ना माँ जी जी मर्जी, लेकिन जीना जीना तो पेंदे ना। सो मेरा जो अजकना टॉपिक आ, अगर तो है प्लीज़ कर की भी हिंद तस्यो रुकी करी होने लिया, या फिर आवाज़ थोड़ी करी जोरे के सो करी लिया, क्यों कि ये टॉपिक किया सो हर किसी वास्ते है। शो तो इवन कि जो बच्चा पढ़ू करता जो अंडरस्टैंड करू करता चीज़ा जो ततियों ले करे बुजुर्ग तक के टॉपिक किया सो बहुत अहमियत रखना, बहुत अहम बहुत इम्पोर्टेंट है। मानसिक शांति जी बिल्कुल जतियों अंग्रेजी में मेंटल पीस किया सो बोलते हैं है ना। तो शो तो हूँ मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, धीमा और सुकून देने वाला संगीत होना चाहिए वह लेते तो सोचो तो है ना। सो अगर तो है होने देन तथों बिकी है सो रिलैक्स फील बनता है। आजकल रही है सो भाग दौड़ भरी जिंदगी में ट्रैफिक रा शोर, कमरा प्रेशर, फैमिली प्रेशर, अन्य और चीज़ा सो की जुड़ रही है ना। इन सब भी रे बिच किया सो अक चीज़ा है कर कर कर का खाऊ कर दे हिन छोता हूँ। सो मतलब हिंदी में गद्दी बोलो तो गुआच गया, सो चीज़ क्या गुआचे हा मानसिक शांति को अच्छे है हिंदी जी बिल्कुल। इस पर जरूर है वार्तालाप कर ले इंदे श्रोता गणा सुगे कनेक्टेड है। नमस्ते जी।
1: नमस्कार सचिन भाई।
0: नमस्ते नमस्कार जी नमस्कार कुंड बलुंदन और कड़ी थम बलुंदन।
1: हाँ बलुआ से स्वागत है सो कुमार
0: जी कुंडन कुमार जी
1: अशोक कुमार
0: अशोक कुमार
1: जी
0: क्या बता अशोक कुमार जी कड़ी हूँ बल्लू गर्दन तो है।
1: हाँ से बड़ी जी
0: सिद्धवाड़ी तो अच्छा कुंडे ने गीत होना अशोक कुमार जी दसो।
1: आओ भाई सुनना करिया का माले या का माला को दिया खानिया 2 रुपया
0: क्या बात है।
1: हां ये कहियो कि जिंदगी की बनता है का जोड़े काम जा।
0: हां जी
1: इतनी जिंदगी से कोई चोरी करा को डाक्या हुआ को लुटो के चली गयो खानिया 2 रुपया ना।
0: आहा क्या सोच है। हां जी वाकई में बड़ा
1: ये गरीब है।
0: हाँ
1: जी मरने दो दिहानियां मेरा दो दिहानियां
0: है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: और से बड़े मैं क्या बना।
0: चलिए जी बड़ा अच्छा गीत और इस गीत

0: जो है जरूर तुम्हारे रेडियो सेट में
1: बहुत
0: ब्रॉडकास्ट कर ले। धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: जी, नमस्ते। दर्शकों यह कार्यक्रम जो होगा बढ़ते हैं और तो इसे बन रहे इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला होगी और हूँ सचिन कपूर। बिल्कुल लाइव कार्यक्रम इस समय चल रहा है श्रोतों। और आइया अह गल करो कर देती है मानसिक शांति रे, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इन अगले श्रोता सु होगी सो कनेक्टेड हैं पूछते हैं कौन बल्लू देना और करी तो। नमस्ते जी। हेलो।
2: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार जी।
2: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: तब नमस्ते जी। नमस्ते, ठीक ठाक?
2: हाँ जी सर जी, ठीक ठाक।
0: राजीव बाजी।
2: हाँ जी राजीव बाजी सर जी।
0: जी कौन बलुंदन और करी थम बलुंदन?
2: सुनील कुमार बोले सर जी, कोटिया थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, कुन्ने ने की थोड़ा जनाब तुसु?
2: सुनील राणा जी दा वाजे जे सुनाई ने गुड़क चमक भाऊआ मेगा वो।
0: अच्छा
2: हाँ जी सर जी,
0: चलिए ठीक है जी, जरूर सुन लेगी तो सुना
2: जी। धन्यवाद सर जी। नमस्ते जी।
0: धन्यवाद जी। नमस्ते।
2: नमस्कार सर जी।
0: ताइये शो तो उन कार्यक्रम जो फिलहाल है तो थोड़ा करिए वो बढ़न दे ना उन तो शुक्र दो कि भाग दी दौड़ दी जिंदगी रे बिच ट्रैफिक रे शोर रे बिच कमर प्रेशर बिच फैमिली प्रेशर रे बिच ऑफिस जड़ी काम करते तड़िया रा प्रेशर लग फैमिली रा लग है इन सभी रे बिच के सो है एक चीज़ खोई चुक रहे हैं शो तो सोहा मानसिक शांति। आज असु शो तो सुकून रे तलाश करने हैं कि कड़ी अस हो गया सो सुकून मिलता है कि कड़ी अस हो गया सो चैन मिलते हैं ये गल पर गया सो गलबात करने हैं शो तो मानसिक शांति की असो किसी भी दुकान पर थोड़ा मिलते हैं इनके भीतर ही गया सो मिलते हैं शो तो। हाँ बिल्कुल ज़रूर कल बात कर ले। बहरहाल तो बंडू ने इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गए और आइए जी लेके चल दें इस पैर तारी किनारी बनी रही है तो इसे बार जे सचिन कपूर सो गए।

वाकई में इनायत चाहता हूँ कि बेशक तू खरी कमाई ले, बेशक तू बुरी कमाई ले, लेकिन खानी तो बंदे तो दुई रोटी ही न, है ना। तो कतियो बुरा काम करना कतियो बुरी के यानी उसको कमानी ही न, कतियो बुरा बढ़ना कसी अगो या कतियो बुरा करना कस की रहा ना। और यही तो जीवन है ना, इस जीवन में यह है भगवान रा ना ले सकते, इस जीवन में है मनु रा खरा कर सकते, क्योंकि इस जीवन में आंसू भगवान ने आंसू गए, सो इंसान बनू रहा और सब भी मोटे गल इंसान तो बनू रहा, पर सोचने समझ नहीं रही किया, सो बुद्धि भी दे तो रहा दिमाग की अशो तो सो दे तो रहा, है ना। सोचने वास्ते समझने वास्ते चीज़ा करने वास्ते की अशो सो दिमाग दे तो रहा है भगवान ने। और जो बगैर सोचे समझे कुछ भी करी दिन देने या कुछ भी बली दिन देने शो तो सो फिर अपने माइंड रहा यूज़ किया सो 0% कर देने तेरा मतलब, है ना। दिमाग दी तुरा सोचा समझा परखा तथियों बाद एक ही सो कुछ रिएक्ट करा या तथियों बाद एक किया सो अगुन रुई कार्यवाही बेशक करा, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है शो शो दो कि बुरी गतियों को मानी खरी के मंदिर ना, है ना। खानी तो अक्सर दुई रोटी ही ना सू। चलिए बहरहाल कार्यक्रम जो है अभी थोड़ा करी हगू बढ़न दे हिंद शो दो और पैग उठ करी बिना फोन छूए कि सो 5 मिनट शांति होके बैठा सब में पहले था, है ना। कुछ एक जो गल्ला जो है सो है ध्यान रखी सकते हैं जिन्हें गल्ला रहा कि कुछ ना लेना हाथ है कुछ ना बिस्तर रहते हैं उठ करी कर कभी थल्ले आसन ला कर रखिए सो 5 मिनट किया सो सोता हूँ बही गाना, है ना। जाने भी तुसू तनाव लगा कि तनाव बड़ो करता था त्राई मुके गहरी सांस किया सो लेने सोता हूँ हर कम जो हाँ ना करना हर कम जो हाँ करना किया सो बंद कर दे सोता हूँ खुद रे वास्ते किया सो समय निकाला जो भी इस समय सियाने हूँ कर दिन तीनों बलना चाहो कि अपने वास्ते किया सो समा समा समा कड्डा मित्रों कजो कि है मतलब जवानी तो है कमाने बिताई देती बचपन तो चलो बचपन बनता लेकिन अब जो जवानी तो बाद जो टाइम पीरियड रहा थोड़ा करे मतलब ओल्ड एज श्री किनारी तड़ी असू यह गल्ला रहा ध्यान के सो जरूर रखना कि हर कम जो किया सो हाँ ना कर सकता है ना। प्रकृति होगी कि ऐसा जुड़ाव जरूर रखना है शो तो बहरहाल कार्यक्रम तो ऐसा हूँ कर देना आरजे सचिन कपूर होगी और कार्यक्रम मंच अब चल देना आगो अगली फरमाइश आई थी ये फरमाइश जो भी पूरा करी देन शो तो बने तो सब आरजे सचिन कपूर होगी गूंज अपने बन रहे और गूंज गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब भी है ट्यून कर रहा वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर है श्रोता बिल्कुल तो सुसोगीता अब मानसिक शांति रिहा है गल करूँ करते थे था आज के मैं 10 बजे उठ करे बिना फोन है 5 था 10 मिनट के सुबह खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाने भी दूसू उतना आप बड़ा श्रोता हूँ था गहरी सांस के ऐसो ज़रूर ले श्रोता हूँ हर गम्मा जो हाँ करना के ऐसो बंद करा अपने बारे में भी सोचा जो तुसू घर लगता सो भी ज़रूर करा है ना खुद रे वास्ते कि ऐसो समय निकाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने वास्ते समय निकालना श्रोता हूँ बहुत चीज़ें बुंदी जो तो कर सकते हैं पौधे जो पानी दे दिया है ना बेगा ताज़ी हवा मगीचे करके ऐसो मॉर्निंग वॉक कर लिया इस प्रकार की चीज़ें कर श्रोता हूँ सो तो है कर सकते हैं है ना अपने आप जो समय देना बहुत ज़रूरी है श्रोता हूँ क्योंकि तो है क्या ना सो बड़े अनमोल हैं हाँ आऊँ कि ऐसो बड़ा अनमोल है ये सोचा तो है क्या ना सो तो है अपने आप में सोचा कि तो है बड़े अनमोल हिन श्रोतों है ना और मोस्ट इम्पोर्टेंट है श्रोतों और भी बहुत सारी टिप्स नहीं सुने आज यारे बारे यहाँ है गल कर सकते हैं फिलहाल उसको था किन्नू भी फरमाइशा लंकरे राजया गीत किया सो होना इन्या और एक दयाली गीत था ज़रूर इन्या जो हुनंदे हिन और कुछ दोस्त बंदे इन श्रोतों जो हाल ही समय की तिंजों के कम बीतरो हुआ लेकिन यादगार दोस्त कहने सो रेंदे हिन यादगार पल कहने सो तिंज हो गए रेंदे हिन अक्सर ऐसा बंदा तुंदे भी ऐसे बहुत सारे दोस्त भूने हिन श्रोतों जिन्या हो कि बड़ा कम समय बेशक तो है गुजार रहा लेकिन बड़ा यादगार समय किया सो रेंदा है ना तो चलिए किन्नू जी भी इंदे दोस्त हैं और यारी फरमाइशा यह फरमाइशा में एक गीत असू ज़रूर होना है पर हाल अगले श्रोता असू के कनेक्टेड हैं नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते बहुत बढ़िया जी तो है बल्ला तो है ठीक ठाक ना अच्छा अच्छी कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन जी अबे बल्ला जी अबे इन्हें तुंदी आवाज
1: अजी मैं कंडी हूँ बल्लू ने
0: अच्छा कंडी थम क्या ना जी तुंदा
1: थोड़ा
0: ना आवाज तुंदी मिचु कर दे ऐसे डबल जी थोड़ा आवाज कभी चु कर दे अभी ना समझ सकूं दे तो शायद रेडियो बक्खे अबे कुरेन कुछ ऐसा
1: अजी बल्ला
0: हाँ जी हेलो हाँ जी जी क्या नाम दसो तुंदा नानक लेरा अच्छा अच्छा ठीक नहीं जी तो है
1: जी
0: अच्छा जी सूटी जी कुंदना क्या फरमा

0: भाई शौर क्या नई ताजी तुंदी पास ऐसो भी जरूर होना जितने भी श्रोता हूं करते हैं। हाँ जी हाँ
1: जी मौसम बड़ा सुहाना सुहाना है थोड़ा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: इंस्टाग्राम मेला लीक हुआ, छोटा मेला सबसे बड़ा मेला।
0: अच्छा, कटास नीरा मेला।
1: कटास नहीं रहता ये भी सीरा पर राजी कंडी लगो मेला ली।
0: अच्छा कंडीरा भी मेला बंदा है ना जी, क्या
1: हाँ जी हाँ जी सब
0: बात है।
1: सब्जी आदमी ने जन्म देना।
0: ओहो क्या बात है क्या बात है जी, तो सो बहुत बहुत मुबारक हूँ स्वीटी जी, जन्मदिन री हार्दिक शुभकामनाएं तुसु। और तो है तुम्हारा फोन मुझे लगता स्वीटी जी खराब हो चुका, फोन नवा ले लिया
1: जी बिल्कुल
0: और जन्मदिन में ये बोल सकते तो सो के तो हमेशा खुश रहन, तंदुरुस्त रहन, सेहतमंद रहन और जी हंसते मुस्कुरंदे ते हंसते मुस्कुरंदे रहन।
1: पर्सन यू आर स्पीकिंग विद।
0: बिल्कुल सूटी जी, कोशिश है कि ऐसा करना चाहिए इंसान जो हमेशा हंसना चाहिए मुस्कुराना
1: करिए
0: चाहिए।
1: उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रख दिया। कृपया
0: माफ़ करो स्वीटी जी, तुम्हारी कॉल असू डिस्कनेक्ट के असो करना पैनी है। तो सब बन रहे हैं इस समय FM बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेडी गुंजन धर्मशाला सो की। और चलिए जी फरमाइश रहा दौर के असो पूरा कर दें, किन्नू जी री फरमाइश कर दें पूरी।

0: चलिए जी, फरमाइश रद्द और बिल्कुल पूरा हाशो तो, और तो सब कॉल असू जरूर करी सकते हैं 7018 8 8 7 0 9 8 पर नंबर एक मौके फ्री 7018 8 8 7 0 9 8 पर कॉल करी करी इंदे सोनू भाई हिन जो कि उड़ीसा अंदर पोस्टेड हैं और उड़ीसा तो इस कार्यक्रम जो उन्होंने कर दें तिन्हें भी अपनी फरमाइश किया सो रखिया। बहरहाल इंदे अगले श्रोता असू की कनेक्टेड हिन तिन्हें भी कनेक्ट कर दें पूछते हैं कौन बलून दें और कड़ी थो बलून दें। नमस्ते नमस्ते जी, हेलो नमस्कार जी,
1: नमस्कार महाराज जी,
0: जी महाराज नमस्ते, ठीक ठाक राजीव बाजी,
1: नमस्ते जी
0: राजीव बाजी, करे लगुरन जी
1: महाराज जी करा लेना होई होई फिर खा लगुरी है मारे मेरे छुट्टे।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: आज देखो राजी करना।
0: अच्छा
1: हाँ
0: जी, तब ठीक है जी, दुकाना काम कार
1: नहीं जी।
0: अच्छा नहीं हाँ,
1: अरे नहीं महाराज।
0: अच्छा तुस गैस सारी दिक्कत इच्छो कर दे है ना जी।
1: हाँ जी,
0: तो क्या गड्डी नहीं दी तुंदी बस है या फिर क्या परेशानी क्या दिक्कत है?
1: अली गड्डी आई ना महाराज, ये बंदा सिलेंडर है ना के गैस वाला।
0: अच्छा
1: सो बराना सो आई ना थी अली गड्डी
0: तो
1: इंडक्शन रख हुआ है।
0: अच्छा
1: इंडक्शन होगी बुलंद है चाचू।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी,
0: तो कोशिश करें गड्डी वाले होगी थोड़ा संपर्क करने रही ताकि गड्डी चली है बल्ले तीनों क्या है पिछले इतने महीने तो परेशान चल रहे हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: है ना
1: बल्लू मैं थी ना बल्ल कोई गल ना पजाई दिल्ले बल्लू
0: तो अली तक ना पज ना पुजो फिर
1: ना पुजो जी।
0: जनाब तू मुझे पर्सनल कॉल करे और मुझे फिर तैयार नंबर दिए एक मौके ना जी।
1: हाँ जी,
0: हम तुम्हें हेल्प करनो है मुझे तो पर्सनल कॉल करा
1: बड़ा सिलेंडर बनाना ना सु।
0: हाँ जी
1: हाँ जी, हल्का जी ना तो वाली चाहे मेरे चौड़ा बट्टा बस्ते लगदा है हल्का तो तुम कम नहीं चलता बोड़ी बना जमाने ना होता कुछ भी
0: जी।
1: ये गल है
0: जनाब तो मुझे पर्सनल कॉल करा जरा ना गीत होना पसंद कर ले।
1: गीत महाराज गीत अज अपनी खुशी का गीत सुना महाराज, सब गीत बड़े सोहने लगते ने।
0: अच्छा हेरे जी, अच्छा जो आप फरमाइश आज इंदे सो रेगुलर श्रोतन और तीन फरमाइश भी दस शांत रे कुछ हूँ वाकई में मेरे माइंड थो स्किप चुको तो भल्लू कर देने अपनी पसंद रहा था तो दसा जी कौन दिन होना तुसु
1: जड़ी सुनाई है बड़ी खुशी तो सुनाई है महाराज जी।
0: ठीक है महाराज,
1: खुशी रंधा महाराज है तो से जो से काम ही खुश बल्लू हंसना जी ना बिल्कुल हंसना जिंदा है।
0: चलिए हंसना जरूरी भी है इम्पोर्टेंट भी है और जिंदगी में नई नई चीजें बुंदी रहे तो भी अच्छा लगता है मस्त लगता
1: है।
0: चलिए लेट्स सी क्या बनता हूँ अंदर तुसु कोई प्यारे दे गीत है ना जी पहले चल दे ना उड़ीसा किनारी उड़ीसा तो मेरे वापिस ही ले।
1: ठीक है महाराज जी, ठीक है ठीक है
0: ठीक है महाराज, और मुझे कॉल करे तुम्हें समस्या का समाधान करने की कोशिश कर देना है।
1: अच्छा जी
0: धन्यवाद जी,
1: धन्यवाद महाराज।
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून करो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप तो हूँ कर दिन। बहरहाल चल दिन फिलहाल तो उड़ीसा री किनारी और हूँ दिन इंदे सोनू जी हिन जिन्हें फरमाइश करी है CRPF में BSF में अपनी सेवाएं दे चुके रही।

0: होप सो सुन भाई इंजॉय करूँ। उन्हें तो सह उड़ीसा था, उड़ीसा मंच ये गीत अपने हिमाचल प्रदेश अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा था, है ना जी। तो चलिए यही याद है बुंदी सुनो भाई जो असू जोड़ी करी रख दी हिन सोनू जी माफ़ करा भाई ने बोलना चाहता। वैसे कभी कभी तुस हो गया ऐसा प्यार है ऐसा भाव आता निकल इंदा अंदर अरे भाव सोनू जी ये प्यार आ जो ये रूट सा ये वीडियो गुंजन और ये कार्यक्रम में या रूट आऊँ बल्ले सकदा रूट सा ये जड़ा इन दे कि असू हिमाचल थों जोड़े करे रख दे असू अपनी बोली थों किया सो जोड़े करे रख दे है ना। ताई उड़ीसा थों भी किया सो फरमाइश इच्छू कर दे हा BSF में अपनी सेवाएं दे इच्छू कर दे हैं भाई। शुक्रिया तुंदा अपने बिजी शेड्यूल में भी रोजाना इस कार्यक्रम जो तो है हुन देन है ना। चलिए हम बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता कि आऊँ इतने दूर दूर बिखुरे इन दे श्रोता जो कि आ सो अपने घरारा फील दुआई इन घरारा एहसास किया सो दुआई दिन दिन और बल देना कि श्रोतों की जसले जो चीज़ ना बुनते ना तसी सेरे बड़ी कदर बुनते हैं और जसले जो चीज़ बुनते ना तसी ले सेरे कदर किया सुना बुनते पर आल इन अगले श्रोता सूगे कनेक्टेड इन। नमस्ते जी।
1: हेलो, नमस्ते भाई जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: ठीक हो आप?
0: बढ़िया जी। तो है बल्ले तो ठीक ना।
1: मैं कने आरक ट्विन से बोल रही हूँ, साक्षी।
0: अच्छा साक्षी जी कुंदने गीत थोड़ा तुसु
1: गुड़ा माता मन।
0: अच्छा ठीक है साक्षी जी जरूर तुम दी फरमाइश पूरी कर ले
1: जी। धन्यवाद
0: धन्यवाद जी। चलिए शतन समय रहा थोड़ा करे अभाव और चल दिन स्वीटी जी रहा बर्थडे स्वीटी जी एक मौके फिर जन्मदिन री बधाई हूँ लंबे तेरे ला रहे तो है गीत बोलो तो उसकी बुझियो तो वापस तो सो भी कोऑर्डिनेट करी करे इस गीत का आनंद किया सो तो जरूर

शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब रिट्यून कर रो और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा क्या नहीं सो चल रही था श्रोता वे वक्त उच्च गुत सु थो इजाजत लेने रहे गंदे गंदे हरदेव जी ये बोलो तो कि मेरी कोई फरमाइश होना चाहते हैं था सब गीत अच्छे न माता रानी रा आशीर्वाद मोर आशीर्वाद किया अपनी मोर आशीर्वाद किया सो सोगी बुना चिंदा त्यारा प्यार त्यारा दुलार किया सो सोगी बुना चिंदा इंसान हर परिस्थिति थो किया सो निकले गंदा इस इंसान किया सो हर बुरी कंडीशन थो भी किया सो निकले गंदा हर्ष तो और मानसिक शांति किया सो बुना चिंदी इंसान रह जहन में है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है मानसिक मानसिक शांति और गुणियाली माता रा किया आशीर्वाद बुना चिंदा हा अपनी अपनी कूल जरा आशीर्वाद बुना चिंदा हा। तो चलिए जी श्रोता हूँ सचिन कपूर तुस तो ले लेनो इजाजत गंदे गंदे भगवान रा ना किया माता रानी रा ना किया सो जरूर लेंदे हिन और हंसते रहे मुस्कुरेंदे रहे आर जे सचिन कपूर जो ये हुन दे रहे हुन हुन दे रहे नमस्ते धर्मशाला।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

नमस्कार श्रोताओं, FM 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। बहुत बहुत स्वागत है जिन्होंने भी वेड़ी गुंजन को इस समय ट्यून किया है। और कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर आपके वीडियो सेट पर हाजिर हूँ। गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। कैसे हैं आप सभी, पहले तो ये बताइए। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि खुश रहा करो श्रोतो, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुश रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है, हंसना जो है वो बहुत ज़रूरी है। काम का स्ट्रेस, अपने अपने लेवल का स्ट्रेस जो है काम के रिगार्डिंग, वो सभी को होता है ना। लेकिन इसी बीच जो है ये हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में श्रोतो, हम कहीं ना कहीं अपना मानसिक तनाव की ओर जो है वो अग्रसर हो जाते हैं, मानसिक तनाव की ओर जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम मानसिक तनाव की ओर ज़्यादा ही ना बढ़ जाएं, हम किस तरह से खुद को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। यूँ तो हम अक्सर कहते हैं, सच में कहते हैं ना कि आप मेडिसिन आप योगा करो तो आप सही रहेंगे, आप खुद को अच्छा रखो, खुश रखो, तंदुरुस्त रखो, है ना। रोज़ाना जो है वो मेडिसिन करें तो आप ठीक रहेंगे, है ना। इन चीज़ों पर हम फोकस कहाँ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। फिलहाल हम फोकस करेंगे धर्मशाला के मौसम पर। इस समय जो धर्मशाला का मौसम है श्रोताओं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठंड आज पड़ी है। धर्मशाला में बारिश आज हुई है, तो इस समय की अगर मैं बात करूँ तो 18 डिग्री के आसपास जो है वो टेम्परेचर बना हुआ है। नमी की बात की जाए श्रोताओं, तो 50% जो है वो नमी इस समय बनी हुई है। यह है जनाब धर्मशाला का इस समय का मौसम। आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, और आइए जी लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, शोतों चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सब पुराने हैं ना जी। चलिए, फिलहाल जिंदगी हमें सिखाती है, क्या सिखाती है, आइए आज के विचार की ओर जो है वो बढ़ते हैं। शोतों, जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है, दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ही जो है वो अधिक सरल लगता है ना। तो देखिए, कदर करना सीख लीजिए ना, ज़िंदगी वापस आती है ना ज़िंदगी में आए हुए लोग, कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। ये था आज का सुविचार, श्रोताओं आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ।

मुझे लगा आप सभी चलने लगे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा चुप हो गया। लेकिन आप सभी तो बैठे हैं, आप सभी तो रेडियो सुन रहे हैं, है ना? तो चलना ज़रूरी है क्योंकि इवनिंग वॉक का टाइम है श्रोताओं, और चलना सेहत के लिए, दिल के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए ये गाना सुना है मैंने कि चल चल चल अब तो चल। तो देखिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है, वाकई में ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वॉक का, जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ में श्रोताओं, हमारे लाइफ स्टाइल में, है ना? और इस इम्पोर्टेंट रोल को हम तभी निभा सकते हैं जब हमारे पास वो पूरे दिन का शेड्यूल जो है वो बना होगा, है ना? वो चार्ट एक बना होगा कि हम इतने से इतने ऐसा करेंगे, इतने से इतने ऐसा करेंगे। लेकिन हम अपने लिए इतना प्रोफेशनली हो ही नहीं पाते हैं, बात तो ये है श्रोताओं। आप खुद सोचिए कि आप अपने लिए कभी प्रोफेशनल हो सकते हैं? अपने बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने लिए प्रोफेशनल हो सकते हैं, टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल बना सकते हैं, चार्ट जो है वो बना सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग चलते भी होंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने लिए प्रोफेशनल नहीं होते, क्योंकि कहते हैं यार पूरा दिन तो प्रोफेशनल लाइफ जी है, पूरा दिन तो प्रोफेशनलिज्म के साथ जिए हैं, अभी फिर घर आके वैसे ही करेंगे। लेकिन अपने लिए टाइम निकालना, मैं कह रहा हूँ श्रोताओं, बहुत ज़रूरी है। वॉक करना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, है ना? खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाओं ने मारी बाजी कांगड़ा में बम्पर वोटिंग। जी बिल्कुल, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में पुरुष मतदाता को पिछाड़ते हुए महिलाओं ने दर्ज की 81.71% की रिकॉर्ड भागीदारी। पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए जिला कांगड़ा की विभिन्न पंचायतों में लोकतंत्र का अभूतपूर्व रंग देखने को मिला। कड़ी सुरक्षा और भारी उत्साह के बीच जिला के 281 पंचायतों में जनता ने बढ़ चढ़कर अपने मत अधिकारों का प्रयोग किया। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिला में कुल 76.40% बम्पर मतदान दर्ज किया गया। और श्रोताओं बिल्कुल, लोगों ने अपने गांव की सरकार चुनने के लिए जो है वो मत पेटियों में अपना फैसला बंद कर दिया। इस चुनाव की सबसे खूबसूरत और बड़ी तस्वीर आधी आबादी के ज़बरदस्त उत्साह के रूप में सामने आई है, जिसने पुरुषों को मतदान के प्रतिशत में काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। इस चुनाव की सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि ग्रामीण विकास व्यवस्था ने सरकार चुनने में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक जागरूकता दिखाई। जहां पूरे ज़िला में पुरुष मतदान का प्रतिशत 71.18% है, वहीं महिलाओं का 81.71% है। जी बिल्कुल श्रोताओं, तो ये साफ दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव और विकास की कमान अब महिलाओं के हाथ में है। महिलाएं अपने हाथ में लेने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, आप सभी बने हुए आरजे सचिन कपूर के साथ। लेके चलते हैं आप सभी को इस खूबसूरत से गीत की ओर।

शोधो एफ एम एंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आरजे सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है जनाब आप सभी का जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वेडी गुंजन धर्मशाला में। आइए, कहते हैं खुश रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। श्रोतों, अक्सर हमें स्ट्रेस होता है और ख़ासकर मैं यहाँ पर आज मर्दों की बात ज़रूर करूँगा। श्रोतों की जो मर्द होता है उसे बहुत सारी टेंशनों ने जो है वो घेरा होता है ना। परिवार की चिंता है, बच्चों की फीस है, ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, ये बहुत सारे चीज़ें होती है जब लाइफ थोड़ा सा अनबैलेंस लगने लगती है ना। लेकिन चलिए, कहते हैं ना कि खिलाड़ी वही अच्छा है, फाइटर वही अच्छा है, खिलाड़ी वही अच्छा है जो अच्छा खेले और फाइटर वही अच्छा है जो फाइट अच्छी करे। बहरहाल परशुराम जी भी फाइटर अच्छे थे, हटवास के परशुराम जी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हुए थे। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जो पोस्ट थी वो झूठी बताई गई थी। जी बिल्कुल श्रोताओं, इनकी उम्र 97 नहीं है, 97 साल नहीं है, इनकी उम्र है लगभग 94 साल की उम्र है इनकी। और गांव का वो प्रधान बनकर अपने क्षेत्र को जो है वो नशा मुक्त बनाना और गांव को बुलंदी पर पहुंचाने के परशुराम के सपने जो हैं वो उस समय धराशायी हो गए जब चुनाव अधिकारी ने देर रात उनके हारने की घोषणा कर दी। जी बिल्कुल श्रोताओं, उन्हें मात्र 43 मत मिले हैं। जी बिल्कुल, मात्र 43 लोगों ने जो है वो उन्हें मत दिए हैं, जबकि जीतने वाले ने 402 मत जो है वो हासिल किए हैं। ये परशुराम की शायद आखिरी ख्वाहिश थी जो कि अधूरी रह गई है, जो कि वहाँ के लोगों ने जो है वो अधूरी रखी उनकी ख्वाहिश। वो बुलंदी पर तो पहुँचाना चाहते थे लेकिन जनता का कुछ और ही जो है वो मानना था, जनता का कुछ और ही जो है वो जनता की समझ बनी थी। उन्हें मात्र 43 मत दिए हैं श्रोतों और जीतने वाले को 402 मत जो है वो मिले हैं श्रोतों। इस दौरान इसी पद पर हारने वाले वे अकेले उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि उनके साथ 6 अन्य लोगों ने भी जो है वो इस हार का सामना किया है श्रोतों। इस पद के लिए कुल 8 उम्मीदवार मैदान में थे। दिलचस्प ये रहा था श्रोताओं, दिलचस्पी वाली बात तो ये रही थी कि फेसबुक ने उन्हें 2 दिन पहले ही जो है वो विजयी घोषित कर दिया था, जबकि चुनाव गुरुवार को संपन्न हुए थे। इस दौरान वह सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार मानकर खूब चर्चा में जो है वो रहे। लोग उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन काम नहीं आई वो शुभकामनाएँ। बहरहाल उम्र के इस पड़ाव में भी गांव व लोगों के लिए उनके कुछ कर गुजरने के जज्बे को जो है वो हम बिल्कुल सलाम करते हैं। जी बिल्कुल, और इस पड़ाव पर आकर भी जो है वो अपने गांव की सेवा करना वाकई में ही बाकमाल है, तारीफ़ एक कमाल है। भले ही वह सीधे खड़े होने में भी जो है वो असमर्थ है, लेकिन झुकी कमर के साथ भी जिस तरह अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान जनसंपर्क में लगे रहे वह काबिले तारीफ रहा है। परशुराम जी, आप एक मिसाल बनकर जो है वो हमारे हिमाचल के लिए फेसबुक पर भी बड़े ट्रेंडिंग पर रहे और आज खबरों में भी, रेडियो में भी। चलिए तो कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। आइए श्रोताओं, वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का और अंतराल के बाद लेके चलेंगे आपको हम गीत की ओर।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।

शो तो बहुत ही प्यारे से गीत आप सभी ने सुना, फलक तक चल साथ चल, है ना जी। फलक तक साथ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं शोतों, और जो होते हैं वो बड़े बेमिसाल होते हैं, बड़े खूब होते हैं, बड़े कमाल होते हैं। कबूतर जा जा जा, ये मूवी अपने आप में ही बहुत हसीन है शोतों, ये गीत अपने आप में ही बहुत बाकमाल है। बहरहाल हम आपको लेके चलेंगे जानकारियों की ओर, और जानकारियों के साथ साथ गीत संगीत का पिटारा श्रोताओं यूं ही खुलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा भी जो है वो यूं ही खुलता रहेगा जी। आइए लेकर चलते हैं आप सभी को कांगड़ा को मिले नए प्रधान और उप प्रधान, प्रधान पंचायत प्रधान और उप प्रधान के नाम मैं लेने जा रहा हूँ। एक बार आप सभी को पता लग जाए ताकि कौन प्रधान कहाँ का है, उप प्रधान कहाँ का है। बागनी की बात करूँ तो प्रधान अलका और उप प्रधान विजय है। साथ ही साथ श्रोतों, क्योंकि बाकी हमारे जूहल की बात की जाए तो अनिल प्रधान है और उप प्रधान मदन है, बाकी तो दूर दूर के हैं, इससे कोई हमें मतलब नहीं लेना देना। फिलहाल ये पास के थे इसलिए हमने आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं, साझा किए हैं। बहरहाल तो धर्मशाला की सड़कों पर गिरी रेत बजरी बन रही है खतरा जी, बिल्कुल ओवरलोड जो ट्रक आ रहे हैं श्रोताओं, ट्रकों से सड़क सुरक्षा पर जो है वो मंडराया खतरा। स्मार्ट सिटी धर्मशाला की सड़कों पर निर्माण सामग्री ढोने वाले ट्रकों से गिरती रेत बजरी और अन्य सामग्री अब यातायात सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। धर्मशाला जैसे तेजी से विकसित होते नजर आ रहा है, जैसे धर्मशाला हम सभी देख रहे हैं ना कि किस तरह से तेजी से विकसित हो रहा है ना, शहर में निर्माण सामग्री की लगातार जो है वो बढ़ती मांग के बीच इस सामग्री को निर्माण स्थल पर पहुंचाने वाले वाहनों की लापरवाही शहर की सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। शहर में कई स्थानों पर इन मालवाहक वाहनों को निर्माण संबंधी रेत बजरी को सड़क पर गिरते देखा जो है वो जा सकता है, जिससे सड़क पर निर्माण सामग्री की परत बन जाती है। ये स्थिति विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों के लिए जो है वो बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। सड़क पर बिखरी हुई बजरी रेत और ये दोपहिया वाहनों के लिए जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है और रिस्की है शो, तो है ना जी। और अचानक ब्रेक लगाने पर या मोड़ काटने से ढलान वाले क्षेत्र में जो है वो बाइक से आप सभी जानते हैं कि स्किड होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। धर्मशाला जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ कई सड़कें जो है वो ढलान वाली है, वहाँ इस तरह की लापरवाही दुर्घटना की आशंका को और बढ़ा सकती है श्रोताओं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहन उचित तरीके से ढके नहीं होते हैं, या तो अपनी क्षमता से अधिक सामग्री ढो रहे होते हैं, जिसके कारण सफ़र के दौरान सामग्री सड़क पर गिरती रहती है। सड़क पर फैली रेत न केवल बाइक और स्कूटी चालकों के लिए खतरनाक है, बल्कि कार चालकों के लिए भी जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ज़रूर है श्रोताओं। तो इसलिए जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि धर्मशाला की सड़कों पर गिरी रेत बजरी बन रही है खतरा, तो निर्माण सामग्री से जो है वो उखड़ रही हैं सड़कें, दोपहिया चालकों पर बड़ा खतरा, स्मार्ट सिटी की सड़कों पर ट्रकों की लापरवाही जो है वो भारी पड़ेगी दोपहिया वाहन चार पहिया वाहन वालों को। तो आप सभी ट्रक ओनर से या ट्रक चालक से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा जो है वो ओवरलोड जो है वो रेत बजरी ना करें, है ना, जिससे आपकी छोटी सी लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, किसी का बाजू टूट सकता है, किसी का हाथ टूट सकता है, किसी की लात टूट सकती है श्रोताओं। सो बी केयरफुल, आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा। लेकिन चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर जी जनाब, सुनाते हैं आपको ये गीत, बने रहिए आरजे सचिन कपूर के साथ।

14.91 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने वीडियो सेट पर। तो चलिए श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में लेके चलते हैं आप सभी को थोड़ी सी और आगे श्रोतों। जी बिल्कुल श्रोतों, थोड़ी सी और आगे जो है वो बढ़ना ज़रूर है हमें। फ़िलहाल धर्मशाला में हमने आपको बताया कि धर्मशाला की सड़कों पर जो है वो गिरी रेत बजरी कहीं ना कहीं जो है वो ओवरलोडिंग ट्रक जो है वो थोड़ा सा खतरा जो है वो ज़रूर है। लेकिन श्रोतों मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों के जज्बे ने बढ़ाया है मतदान का मान। जी बिल्कुल श्रोतों, बैजनाथ ब्लॉक की मैं बात करूँगा। पंचायत चुनाव में 102 साल के कैप्टन विशान, जी बिल्कुल 102 साल के थे और वो मतदान करने जो है वो आए हैं। बहरहाल अपने ही पर्यटक नगरी की एक जानकारी है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। पर्यटक नगरी मैक्लोडगंज में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ढाबे में दबिश देकर जो है वो देसी शराब की 8 बोतलें बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना मैक्लोडगंज के एएसआई सतेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ बुधवार शाम करीब 6:30 बजे के करीब जो है वो मुख्य चौक मैक्लोडगंज में जो है वो मौजूद थे, वहाँ पर राउंड पर मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक ढाबे में अवैध रूप से शराब जो है वो बेची जा रही है। सूचना में ये भी बताया गया था कि यदि तुरंत रेड की जाए तो मौके से शराब जो है वो बरामद हो सकती है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने स्थानीय निवासी को गवाह बनाया और ढाबे में दबिश दी। पुलिस को देखते ही ढाबे में मौजूद व्यक्ति घबरा गया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान ऋषि पुत्र गोरख राम निवासी ह्यूरी तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा के रूप में जो है वो बताई। पुलिस ने गवाह की मौजूदगी में ढाबे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान ढाबे के अंदर बेंच के नीचे जो है वो रखी एक पेटी बरामद हुई। श्रोतों देसी शराब की पेटी जो है वो बरामद हुई। जब पेटी को खोलकर देखा तो फिर उसमें देसी शराब की संतरा मार्क की 750-750 ml की कुल 8 बोतलें जो है श्रोतों वो पाई गई। बरामद शराब की कुल मात्रा 6000 ml बताई गई है। उधर ASP कांगड़ा वीर बहादुर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर सील कर दिया है। आरोपी के खिलाफ थाना मैक्लोडगंज में आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(a) के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जो है वो ASI सतेंद्र सिंह द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आइए श्रोतों कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा और अब से आप कुछ ही देर में जो है वो समाचार सुनेंगे। श्रोताओं कृपया रिले की प्रतीक्षा करें और जुड़े रहिएगा आपके अपने वेड़ी गुंजन के साथ।

0: तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खई शिंग और अरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पुनः आप सभी का अंतराल के बाद बहुत बहुत स्वागत है। मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम आप सभी गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं, मेरे साथ है आप बिल्कुल लाइव है। चलिए तो कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा जो है वो आप सुन ही रहे हैं, खुल ही रहा है, और गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी खुल रहा है श्रोतो, है ना जी। आइए लेकिन लेके चलते हैं आप सभी को थोड़ा सा और आगे, और मैं आपको आपके साथ ना श्रोता हूँ सभी ज़िलों का जो मतदान का आंकड़ा है वो शेयर करता हूँ। मैं ज़िला बिलासपुर की मैं बात करूँ तो कुल मतदाता जो थे वो कम से कम 108,745 थे। मतदान जो हुआ है वो लगभग 80% हुआ है। चंबा की बात की जाए तो कुल मतदाता 148,219 थे और 78% जो है वो मतदान प्रतिशत, ये मतदान प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूँ कि कितना प्रतिशत हुआ है। अच्छा, कांगड़ा की बात की जाए तो 76% हुआ है। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो 68% हुआ है। शिमला की बात की जाए तो 81% हुआ है, और सोलन की बात की जाए तो 84% हुआ है। बहरहाल कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए लेके चलते हैं आप सभी को, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। ओमान ठीक से रहे वरना उड़ा देंगे, ये रूस को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, बाकी देशों की तरह ही व्यवहार करना होगा। जी बिल्कुल श्रोताओं, कनाडा में भारतीय छात्रा की चाकू मारकर जो है वो हत्या हुई है, 15 मई से थी लापता, ये कनाडा की बात है श्रोताओं। तो जानकारियाँ यूं ही चलती रहेंगी, आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहिएगा।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। चलिए, कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है और इंसान से अक्सर गलतियाँ होती हैं, और कहते हैं माफ़ करने वाला जो है वो अक्सर बड़ा रहता है, बड़ा होता है। तो कभी भी किसी से जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हो तो आप माफ़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि माफ़ करने वाला जो है वो बड़ा होता है। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी को श्रोतो, मदद के नाम पैसों की डिमांड तो रहे सतर्क। जी बिल्कुल श्रोतो, साइबर ठग जो हैं वो नई नई तकनीकों से, नई नई टेक्निकल चीज़ों से जो है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अलग अलग तकनीक का जनता को लूटने के लिए हाईटेक तरीका जो है वो अपना रहे हैं शातिर। साइबर सेल शिमला ने जारी की एडवाइजरी श्रोताओं, और कह रहे हैं कि आप सभी सतर्क जो है वो ज़रूर रहे। पैसे की मांग करता है अगर मतलब आपका पति आपकी पत्नी की आवाज़ में आपसे, माता पिता की आवाज़ में आपसे पैसे की मांग करता है और ऑनलाइन भेजने की बात कहता है तो बिल्कुल पैसा देने से मना कर दें। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो आपके खाते से एक पल में सारे पैसे, सारे राशि जो है वो गायब हो सकती है। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए कई तरह के जो है वो वॉइस मैसेज तैयार कर लिए हैं श्रोताओं, और फ़ोन कॉल पर शातिर कभी आपकी पत्नी बन सकती है तो कभी आपके पिता बन सकते हैं, कभी माँ तो कभी बहन। इसलिए जब कोई आपको अपना दूसरे नंबर से कॉल करे तो सबसे पहले उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करें, इसके बाद जांच करें कि क्या वाकई में ही बेटे को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, पिता को पैसे की ज़रूरत है, माता को पैसे की ज़रूरत है, उसके बाद ही जो है फिर कोई निर्णय या फिर कोई फैसला जो है वो ले। साइबर सेल शिमला में लोगों से साइबर ठग के झांसे में ना आने की अपील की है। साइबर सेल शिमला की ओर से ठगों से बचने के लिए जो

है वो एडवाइजरी भी जारी की गई है। जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया हाईटेक हो रही है, ठीक उसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में साइबर ठग भी जो साइबर ठग जो हैं वो भी हाईटेक तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, और हाईटेक तरीके अपना कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। साइबर ठग आपकी आवाज़ से आपको अपने जाल में फंसा रहे हैं। साइबर ठग आपका बेटा या कोई और रिश्तेदार बनकर कॉल करेंगे इस खेल को अंजाम देने के लिए। एक पूरा प्रोसेस जो है वो होता है श्रोताओं। साइबर अपराधी आपका दोस्त बनकर आपको सीधे कॉल करते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो इस दौरान आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। जब ये आपको दोस्त कहकर कॉल करते हैं तो महज 3 सेकंड में आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं, और AI की मदद से कई मैसेज जो हैं वो तैयार कर लेते हैं श्रोताओं। तो साइबर ठगों का सारा खेल यहीं से शुरू होता है। साइबर सेल की एडवाइजरी ने बताया है श्रोताओं कि अगर कोई आपके पर्सनल नंबर से आपको कॉल करे तो ही उस पर जो है वो आप विश्वास करें। साइबर ठगों के जाल में फंसे लोग जो हैं वो वॉइस यानी आपकी आवाज़ और डुप्लीकेट आवाज़ को नहीं पहचाने। मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी आवाज़ का जो है वो मिसयूज किया जा सकता है। सो बी केयरफुल, है ना। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूँ ही।

शुद्ध एफएम 91.2 MHz पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं सचिन कपूर के साथ। बहुत ही प्यारा सा ये गीत था, क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना। तो आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना मूवी से लिया गया है और अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज़ में ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी ने सुना। तो श्रोताओं आज से बदलेगा मौसम, जैसे कि आप सभी ने देखा कि आज दोपहर से जो है वो बदला हुआ था मौसम, गर्मी से बिल्कुल राहत जो है वो मिली थी। हिमाचल प्रदेश के 9 शहरों में पारा जो है वो 35 डिग्री पार, ऊना में अधिकतम पारा तापमान जो है वो 43.2 डिग्री है। जी बिल्कुल, प्रदेश में लगातार गर्मी का दौर जो है वो जारी है श्रोताओं, और प्रदेश के अधिकांश भागों में तेज धूप के चलते प्रमुख 9 शहरों का तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला गया है। हालांकि आगामी समय में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के तहत राज्य के अधिकांश भागों में 29 मई को बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इस दौरान राज्य के पांच जिलों शिमला मंडी कुल्लू सोलन और सिरमौर में जो है वो तेज़ हवाएं चलेंगी, ओलावृष्टि होगी। इस चीज़ का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है श्रोताओं, जबकि बाकी अन्य पांच जिला ऊना बिलासपुर चंबा कांगड़ा और हमीरपुर में तेज़ हवाओं सहित जो है वो बिजली गिरने का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है श्रोताओं। ऐसे में मौसम में करवट बदलने की संभावनाओं के बीच भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने के आसार जो हैं वो लग रहे हैं। मौसम विभाग ने जो है वो इस समय मैं बताऊं आज जो है वो प्रदेश भर में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। वहीं प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जो है वो भीषण गर्मी का असर हालांकि अभी भी जारी है। बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में लगातार तीसरे दिन जो है वो लू चली श्रोताओं। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान में ऊना में जो है वो 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि हमीरपुर के नहरी में पारा लगभग 40 डिग्री के आसपास जो है वो रहा है श्रोतों। शिमला समेत अधिकांश क्षेत्रों में दिन भर तेज़ धूप खिली रही श्रोतों। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मौसम में बदलाव देखने को जो है वो मिलेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है शुक्रवार को। हालांकि सुबह कई जिलों में जो है वो बादल छाए रहे थे श्रोताओं, और इसी दौरान हल्की गर्मी से राहत जो है वो मिली आज। जानकारियों को बिटारा यूँ ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए आरजे सचिन कपूर के साथ, आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला चल रहा है आप सभी की रेडियो सेट पर। तो चलिए श्रोता, वक्त हो गया है अब छोटे से अंतराल का, वापस मिलते हैं आप सभी से अंतराल के बाद। बने रहेगा, जुड़े रहेगा रेडियो गुंजन की सी गूंज।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

श्रोता अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। मैं हूँ सचिन कपूर, आपका अपना वीडियो जो कि आपका अपना सचिन कपूर। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल उन्हें, मिल ही जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं है। तो बिल्कुल श्रोताओं, कभी भी किसी को जो है वो कम नहीं आंकना चाहिए। इंसान लर्निंग जो है वो तय उम्र करता है, सारी उम्र जो है वो सीखता रहता है, और इंसान में जो है वो सीखने की वो ललक होनी चाहिए, इंसान में सीखने का वो अनुभव भी होना चाहिए, वो तजुर्बा भी होना चाहिए, वो ललक भी होनी चाहिए, तभी इंसान जो है वो सीखता है। बहरहाल 7:45 हो रहे हैं और वक्त हो गया है प्रादेशिक समाचारों का रेडियो गुंजन धर्मशाला में, गूंज अपनेपन की और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

0: सुक्खू ने कहा, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण दे रही है राज्य सरकार। प्रदेश में 16 जून से शुरू होगा जनगणना 2027 का पहला चरण, डिजिटल तकनीक से पहली बार होगी जनगणना। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए कल प्रदेश की 1187 पंचायतों में होगा मतदान, सभी तैयारियां पूरी। पीएम विकास योजना के तहत प्रदेश के 2420 युवाओं व महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में उनसे मिलने आए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के 21 विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों से इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाकर जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 से अधिक स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू किया है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस बीच एशियन कुराश कप सीनियर वर्ग के कांस्य पदक विजेता सौरभ सुमन ने भी आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की। सौरभ सुमन ने 22 से 25 मई तक उज्बेकिस्तान के नुकुस में आयोजित एशियन कुराश कप प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ सुमन की ये उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को खेलों और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की गणना 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने शिमला में बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तकनीक, मोबाइल ऐप और स्वगणना की सुविधा से लैस होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनगणना पर 86 करोड़ रूपए खर्च होंगे। दीपशिखा शर्मा ने कहा कि पहला चरण मकान सूचीकरण व आवास गणना का होगा, जो 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा, जबकि इस बार नागरिकों को स्वगणना की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए 1 जून से 15 जून तक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध रहेगा, जहां परिवार स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले चरण के सफल संचालन के लिए लगभग 20,630 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी।
1: हिमाचल प्रदेश में जो मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, यानी प्रथम चरण, उसे 16 जून से 15 जुलाई में कंडक्ट किया जा रहा है। इस बार स्वगणना का विकल्प भी रखा गया है, मतलब कि यदि कोई आम नागरिक अपने आप अपनी जानकारी दर्ज करना चाहता है तो उन्हें यह सुविधा दी गई है, जिसके लिए स्वगणना पोर्टल है। आप sc.census.gov.in टाइप करके उस पोर्टल पर पहुँच कर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं 16 जून से 15 जुलाई के भीतर। तो उस वक्त जो प्रगणक है वो हर घर में, हर स्ट्रक्चर में विजिट करेंगे, उस वक्त उनसे उस सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी को शेयर किया जाएगा और वो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी के मैच करने पर जो भी घर में उपस्थित होते हैं उनके साथ उन प्रश्नों को वेरीफाई करके उसको फाइनली सबमिट कर देंगे। मैं हिमाचल की जनता से यह भी आह्वान करूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वगणना करके इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें।
0: प्रदेश में कल 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1187 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। उधर सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि कल अंतिम चरण में जिले की 89 पंचायतों में मतदान होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं।
2: इसमें हमारी टोटल 89 पंचायतें रहेंगी और 515 वार्ड्स रहेंगे। यहाँ कल मतदान किया जाएगा। अब तक का जो मतदान हमारे दो चरणों में रहा है वो काफी पीसफुल रहा है। लोग भारी संख्या में आए हैं मतदान देने के लिए। मैं उन सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने गर्म मौसम में भी वो अपना मताधिकार एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आगे आके प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं। कल का भी हमारा क्योंकि अंतिम चरण है, मैं अपील करूंगी आप सभी से कि आखिरी दिन जो हमारा 89 पंचायत है वहाँ के जितने भी कंसर्न हमारे से मोरवासी हैं कल आए और आप अच्छे से वोट करें।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के कुल 2420 युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास व उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज शाम के समय तेज वर्षा व ओलावृष्टि होने से तापमान में हल्की गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। शिमला जिला के ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं अत्यधिक ओलावृष्टि से सेब सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
3: हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत ली है, लेकिन ओलावृष्टि से कई भागों में सेब व दूसरी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। शिमला जिला के खड़ा पत्थर और रोहडू जबकि मंडी जिला के करसोग के डींग व कथेड़ में ओलावृष्टि से सेब की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए लगाए गए एंटी हेलनेट भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कल भी किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में आंधी तूफान व ओलावृष्टि के ये येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: अकादमिक अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। ये समझौता राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत किया गया है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने कहा कि इस MOU के तहत दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से कई अकादमिक और शोध गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे।
4: आने वाले समय में हम कुछ कोर्सेज को ज्वाइंट प्रोग्राम के तहत और ड्यूअल डिग्री भी स्टार्ट करेंगे। कुछ स्किल एनहांसमेंट के लिए वर्क करेंगे, एक हम ज्वाइंट जनरल चलाएंगे और कुछ हम कॉमन इश्यूज पे कुछ कंपेंडियम वो हम तैयार करेंगे। जो उनकी स्ट्रेंथ्स है वो हम लेंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ्स है वो लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे मिलकर के। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मैंडेट को भी ध्यान में रखा गया है।
0: प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के चलते वनों में आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश भर में वनों में आग लगने की अब तक 263 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 3328 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार वनों में आग लगने की घटनाओं से करीब 82 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। मंडी सर्किल में वन अग्नि की करीब 87 घटनाएं दर्ज की गई हैं और 513 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र आग की चपेट में आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण दे रही है राज्य सरकार। प्रदेश में 16 जून से होगा जनगणना 2027 का पहला चरण, डिजिटल तकनीक से पहली बार होगी जनगणना। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए कल प्रदेश की 1187 पंचायतों में होगा मतदान, सभी तैयारियां पूरी। पीएम विकास योजना के तहत प्रदेश के 2420 युवाओं व महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। और राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
5: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी नेटिव उनकी है वीडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। तो आइए मैं सचिन कपूर आप सभी से फिलहाल ले लेता हूँ अब अलविदा और यही कहूँगा जाते जाते हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए माँ बाप की सेवा करते रहिए कभी किसी का दिल मत दुखाइए एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखिए नमस्ते।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्यघर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेट।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 Wi-Fi सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली
4: हाँ?
5: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

92.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।